0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

फादर्स डे और योगा डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए। काम के बीच थोड़ा सुर थोड़ा सुकून, सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

आज फादर्स डे और योगा डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए। काम के बीच थोड़ा सुर थोड़ा सुकून, सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: फादर्स डे और योगा डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए। काम के बीच थोड़ा सुर थोड़ा सुकून सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद मिर्ची आफरीन। इट्स हॉट 89.6 89.6 89.6 Mirchi 1. It's hot.

देखो मेरे ख्याल में तो इंसान एक बैटरी जैसा होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बैटरी जानते हो, वही बैटरी जो खिलौनों में जाती है, जो रिमोट कंट्रोल में जाती है, जिसमें प्लस और माइनस दो साइड्स होते हैं। इंसान में ना कुछ उसी तरह से होता है कि हम अक्सर बहुत जल्दी लेबल करते हैं लोगों को। अरे भाई ये जो इंसान है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये जो इंसान है ना ये भाई ये बहुत अच्छा है, इसका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन सच कहूँ ना, सभी में एक पॉजिटिव साइड्स होते हैं और नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो हम किस तरह से लोगों को देखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कई बार हम लोगों के ना फ्लॉज देख लेते हैं और बस उसमें हम उन्हें सीधा बहुत जल्दी से लेबल करते हैं कि भाई ये बहुत ख़राब है, इसने ना ऐसा किया है, इसकी तो सोच ही ऐसी है। लेकिन हर एक खराब इंसान जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है जो शायद हम नज़रअंदाज करते हैं या फिर हमारे सामने वो पहलू आता ही नहीं है। और हर एक अच्छा इंसान जो हमें परफेक्ट लगता है कहीं से भी, वो उसमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अगली बार किसी को आप लेबल करो ना, जज करो कि ये शायद ऐसा है, या फिर ये हम यकीन के साथ कहते हैं कि यार इसका दिल बिल्कुल काला है, तो फिर सोच लीजिए, थोड़ा देर ठहर जाइए कि भाई कोई आपको भी उसी नज़रिए से शायद देख रहा होगा। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
0: स्पीकिंग।
1: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा।
1: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
0: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
1: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
1: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
0: आ सकती हूँ मैं उसमें?
1: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
0: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
1: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
0: आपका क्या है?
1: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
0: ठीक है।
1: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
0: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
1: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
0: मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
1: हेलो,
0: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
1: तानिया मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मतलब जिस तरह से अगर मैं जब निकलती हूँ ना 11-12 बजे के आसपास जब मैं निकलती हूँ, इतनी कड़ाके की धूप होती है, उफ, मतलब कल तो गारंटीड मेरा सर दर्द शाम तक रहा बिकॉज ऑफ दैट धूप. आज का क्या हाल है वेदर का, चलिए जरा ये देख लेते हैं.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. देखो वेदर आज का ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, मिनिमम 30 तक रहेगा. एक्चुअल जो फील्स है वो फिलहाल आपको महसूस हो रहा है वो 36 डिग्री सेल्सियस है. हालांकि देखिए अभी जो महसूस हमें जो हो रहा है वो वेदर डिग्रीज में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाप सी लगती है ना. वेल अभी तो बस शुरुआत है, जुलाई अगस्त आना बाकी है. एंड फॉर ऑल द क्यूटी पाइज आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी, स्कूल जाते जाते दिन गिन रहे हैं ना आप के 3 days to go, 5 days to go छुट्टियों के. तो बताओ मुझे कितने डेज टू गो छुट्टियां शुरू होने के लिए. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. एंड ऑल द किडोज लिसनिंग टू मी जो स्कूल जा रहे हैं, बताओ बताओ कितने दिन बचे हैं छुट्टियां शुरू होने के लिए.
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100813.
0: Well, अगला गाना खास वो क्यूटी पाइस के लिए जो हमें सुन रहे हैं. Enjoy it on Mirchi, Mike से दिल तक आफरीन के साथ. It's hot.

ज्यादा करती आवाज में ये गाना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और काला चश्मा तो भाई इस सीजन में अपना बेस्ट फ्रेंड रह ही जाता है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही नजर आते हैं और कुछ लोग जाने के बाद भी याद रहते हैं, और वो फर्क बस थोड़ा छोटा सा है। फर्क बस उनकी खुशबू का है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं मेरी तरह जो परफ्यूम को सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन मानते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। यस, दोहा का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम एग्जीबिशन दैट इज तीब अल हजम, इट इज कमिंग बैक। और ये 25 जून से स्टार्ट होने वाला है और 4 जुलाई तक रहने वाला है। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल अरबिक ऊद, बखूल, लग्जरी फ्रेग्रेंस और कई प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड एक ही छत के नीचे। मतलब मैं पिछली बार गई थी एंड इट वाज नॉट इनफ, मतलब एक बार नहीं दो बार गई थी एंड लिटरली वहां पर मैंने देखा कि लोग ट्रॉली भर भर के परफ्यूम्स लेते हैं। कुछ तो बात होगी उसमें, इसीलिए राइट। सो इफ यू आर रियली अ परफ्यूम लवर, यू शुड नॉट मिस तीब अल हजम इन अल हजम मॉल। वेल, ओपनिंग डे पर जो है वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, रात के 11 बजे तक रहेगा। उसके अलावा वीकडेज में 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, फ्राइडेज को 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center. Mirchi
1: One, it's hot. Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
2: अबे लल्लू, ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर, व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
4: म्यूजिक हमारे चारों ओर है, बस सुनने की देरी है।

0: आज फादर्स डे और योगा डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए। काम के बीच थोड़ा सुर थोड़ा सुकून सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद मिर्ची आफरीन। इट्स हॉट 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

Well, all the football fans, World Cup का ड्रामा अब असली गियर में आ रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और जरा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं. कल स्पेन ने सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराकर अपनी कैंपेन को टर्बो मोड में बिल्कुल डाल ही दिया है. ईरान ने बेल्जियम को रोककर सबको सरप्राइज किया. और सबसे बड़ी अंडरडॉग स्टोरी तो बनी है केप वर्जे की, यस, जिसने यूरोगे के साथ 2-2 ड्रॉ करके पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया है. अब यूरोगे पर क्वालिफिकेशन का प्रेशर बहुत बढ़ गया है. अच्छा, अगर अगले 24 आवर्स का देखे तो वो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, क्योंकि फ्रांस का मुकाबला इराक से होने वाला है, नॉर्वे टकराएगा सेनेगल से, अर्जेंटीना सामने होगी ऑस्ट्रिया के, और अल्जीरिया का क्लैश जॉर्डन से. ये वो स्टेज है जहां सिर्फ जीतना काफी नहीं होने वाला है. ओके, गोल डिफरेंस और ग्रुप पोजिशनिंग ये सब डिसाइड करेगा फ्यूचर अपोनेंट्स. वेल, एक इंटरेस्टिंग बात यह है दैट वर्ल्ड कप के पहले हफ्ते में ही हमें याद दिला दिया गया है कि फुटबॉल में रेप्यूटेशन नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस ही मैटर करती है. क्योंकि केप वर्डे जैसे डेब्यूटेंट्स जायंट्स को परेशान कर रहे हैं, और इसी अनप्रडिक्टेबिलिटी का नाम है फुटबॉल वर्ल्ड कप. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. बस इसी तरह से इस साल के फीफा 2026 के आपको स्कोर कार्ड लाते रहूंगी. और मैं शो मिर्ची मॉर्निंग्स. It's hot.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga. ¿Aló? ¿Aló?
2: ¡Ama, papá! ¡Ay,
1: cómo volá!
2: ¡Ama, voy a poner a llorar!
1: ¡Aló, papá, cómo volá!
2: अब मुझे मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: बता दो
2: अबे
1: भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा
2: है क्या बात है तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा हूँ सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कहता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने आसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा मुझे सच सच बताओ कि आप वॉलेट घर पर रहने पर ज्यादा पैनिक होते हैं या फिर फोन भूलने पर ज्यादा पैनिक होते हैं? देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फोन अगर घर पर रह जाए तो ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि भाई फोन ही आजकल हमारा मिनी बैंक बन चुका है, राइट। एंड कतर ने डिजिटल कन्वीनियंस को एक और लेवल अप कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि अब हिमियन कार्ड होल्डर्स एप्पल पे के थ्रू एटीएम से कैश विदड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकेंगे। मतलब फिजिकल कार्ड भूल गए, नो वरीज, अगर एटीएम इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो सिर्फ अपने आईफोन या एप्पल वॉलेट के जरिए काम हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। ये सिर्फ कन्वीनियंस की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट और सिक्योरिटी की भी स्टोरी है। एंड ये हम कैशलेस सोसाइटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कैश की जरूरत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले एटीएम तक कार्ड ले जाना पड़ता था, अब एटीएम तक फोन ले जाना पड़ेगा। That's getting even more convenient day by day. देखिए कतर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली बिल्कुल इवॉल्व होते जा रहा है। मेट्रो से पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और अब कार्ड के बिना एटीएम विड्रॉवल, क्या बात है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ जुड़े रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
8: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
9: Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
10: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
11: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
12: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: देखो हम जो मिले हैं आपको तो एंटरटेनमेंट एब्सोल्युटली गारंटीड है। फिलहाल तो देखिए मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो अगले गेम की तरफ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि टाइम हो रहा है 7:39।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट इज टाइम कि हम यहाँ पर गेम खेले। और गेम कौन सा? वही जहाँ पर मैं आपको सीन सुनाने वाली हूँ एंड यू हैव टू गेस माई फ्रेंड विच मूवी इज दिस। एंड आज तो मैं डिफिकल्ट वाला ढूंढ कर ही लाई हूँ सीरियसली, और बड़ा मजा आने वाला है कि आप अब कैसे पहचानते हैं, मैं देखती हूँ। ठीक है, ये एक शायरी है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त लेजेंडरी एक्टर ने ये शायरी एक मूवी में सुनाई थी। अब उनका किरदार ही एक पोएट का था, ठीक है, आप ये सुन लीजिए फिर बात करेंगे इस किरदार के बारे में।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: अर्ज किया है एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून।
0: क्या बात है, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में खसक होगी न सर पे जुनून होगा। क्या बात है, बताइए कौन सी मूवी का डायलॉग है ये। पहली बात तो ये बहुत ही बड़े लेजेंडरी एक्टर है, इनकी आवाज़ तो आपने पहचान ली होगी। अब ये सोचो कि इन्होंने कौन से मूवी में शायर का किरदार प्ले किया है, ठीक है। अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर से सुना दीजिए। चलिए ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन करके आपको ये डायलॉग फिर से सुना देती हूँ।
2: एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून।
0: देखो आज तो आपको सुकून नहीं मिलेगा यहाँ पर आंसर ना दिए हुए, ठीक है। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से आके यहाँ पे बताओ। और जबरदस्त तरीके से गलत जवाब जो आ रहे हैं यहाँ पर, मजा आ रहा है मुझे, ठीक है ना। फनाम नहीं है ये, आमिर खान की आवाज थोड़ी है, सोचो सोचो। फिलहाल तो आयुष्मान खुराना की आवाज आपको सुनाती हूँ यहाँ पर। विकी डोनर का ये खूबसूरत सा गाना माई से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Arijit Singh और Nikita Gandhi की आवाज में ये गाना अभी right here आपने सुना on Mirchi Mornings, और बड़ा ही कंफ्यूज कर दिया था मैंने आपको. देखिए, ऐसा सवाल पूछा था जहां पर पहले तो सबने गलत जवाब दिया है, और उसके बाद में जब मैंने मैसेजेस किए हैं यहां पर कि गलत गलत गलत, तब जाके बहुत दिमाग पे जोर डालने के बाद आई एम श्योर आप लोगों ने यहां पे सही जवाब दिया है. अब जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं सोच रहे हैं आफरीन किस चीज के बारे में बात करिए, तो लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट के बारे में.
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून.
1: क्या बात है, क्या बात है. ये जो किरदार है, इन्होंने एक शायर का ही रोल किया था. ये जो एक्टर है, इन्होंने एक शायर का किरदार निभाया था, बट इतना सॉफ्ट शायर जो नज़र आ रहा था वो एक्चुअल में ऐसा था नहीं. व्हाट अ रोल दिस वाज एंड हैज़ टू बी. भाई, जब विशाल भारद्वाज कोई ऐसी मूवी बनाते हैं तो हटके बनाते हैं. और एक वॉइस मैसेज आया है, पहले मैं वो सुना देती हूँ आपको.
3: हेलो, मोहम्मद अख्तर.
1: गुड मॉर्निंग.
3: टुडे द नेम ऑफ द मूवी.
1: अच्छा,
3: प्रोटैगनिस्ट इज द लेजेंडरी द लेट मिस्टर इरफान खान.
1: ऑलराइट,
3: अलोंग विद प्रियंका चोपड़ा एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज विशाल भारद्वाज एंड द लिरिक्स ऑफ दिस मूवी वाज रिटन बाय गुलजार साहब. Now you guess the movie and tell me today.
1: ये अच्छी बात है भाई, हमारी बिल्ली हमसे मियाऊ. हमने यहाँ पे सवाल पूछा, आपने हर चीज बताई लेकिन मूवी का नाम नहीं बताया. लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ मैसेज आया है. हुज़ैब का मैसेज है, फामा का मैसेज है, अब्दुल रज़ाक का मैसेज है, देन आई हैव योर, और कौन है ये, शारिक का मैसेज है, देन आई हैव चार्ली मैसेजिंग मी, और बहुत सारे लोग हैं. नीरज का मैसेज है, मोहम्मद अमर का मैसेज है, और Yes, the list is long, long, long. और जिन्होंने अपने नाम टाइप नहीं किए ना, तो उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं पुकार रही हूँ, ठीक है. सो यस, एवरीवन हैड्स टू से कि भाई विशाल भारद्वाज की मूवी जो ये तुमने सुनाई है डायलॉग, ये सात खून माफ से है. प्रियंका चोपड़ा की व्हाट एन एक्टिंग. साथ में इसमें उषा उत्तप भी थी. यस, जहाँ मूवी के दौरान इतना मुझे समझ नहीं आया था, बट आफ्टर द मूवी कंप्लीटेड एंड आई केम टू नो दैट यार वो जो लेडी थ्रू आउट द टाइम प्रियंका चोपड़ा के साथ होती है वो उषा उत्तप है. एंड अगला जो गाना बजा रही हूँ ना ये मूवी का, यू आर गोना थैंक मी सेइंग दैट. वाव आफरीन, क्या गाना सुनाया है आज. दिन तो बढ़िया ही जाने वाला है, ऑफकोर्स जाएगा. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची.

0: फादर्स डे और योगा डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए। काम के बीच थोड़ा सुर थोड़ा सुकून सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद मिर्ची आफरीन। इट्स हॉट 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
0: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, ऑल द फुटबॉल फैंस, वर्ल्ड कप का ड्रामा अब असली गियर में आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और जरा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। कल स्पेन ने सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराकर अपनी कैंपेन को टर्बो मोड में बिल्कुल डाल ही दिया है। ईरान ने बेल्जियम को रोककर सबको सरप्राइज किया और सबसे बड़ी अंडरडॉग स्टोरी तो बनी है केप वर्डे की, यस, जिसने यूरुग्वे के साथ 2-2 ड्रॉ करके पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। अब यूरुग्वे पर क्वालिफिकेशन का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अच्छा, अगर अगले 24 आवर्स क्या देखे तो वो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, क्योंकि फ्रांस का मुकाबला इराक से होने वाला है, नॉर्वे टकराएगा सेनेगल से, अर्जेंटीना सामने होगी ऑस्ट्रिया के, और अल्जीरिया का क्लैश जॉर्डन से। ये वो स्टेज है जहां सिर्फ जीतना काफी नहीं होने वाला है, ओके, गोल डिफरेंस और ग्रुप पोजिशनिंग ये सब डिसाइड करेगा फ्यूचर अपोनेंट्स। वेल, एक इंटरेस्टिंग बात यह है दैट वर्ल्ड कप के पहले हफ्ते में ही हमें याद दिला दिया गया है कि फुटबॉल में रेप्यूटेशन नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस ही मैटर करती है, क्योंकि केप वर्डे जैसे डेब्यूटेंट्स जायंट्स को परेशान कर रहे हैं और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम है फुटबॉल वर्ल्ड कप। मैं हूं आफरीन आपके साथ। बस इसी तरह से इस साल के फीफा 2026 के आपको स्कोर कार्ड लाते रहूंगी ऑन माई शो मिर्ची मॉर्निंग्स। It's hot.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: भड़क आप रहो भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप.
3: ओ बच्चे चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा से जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई, कुकड़ों को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटा कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100-0813.

बस संजू राठौर की आवाज में गाना तो शेकी शेकी सुन लिया आपने, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये मुझे कुछ शेकी शेकी से नहीं लग रहे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को और मैं बात कर रही हूँ एक्सचेंज रेट्स के बारे में, जो लगभग कल की तरह ही है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। देखिए एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 25.89 रुपीस, वही पाकिस्तानी रुपीस जनाब इट इज एट 76.74, बांग्लादेशी टाका जो है 33.78 पर है, श्रीलंकन रुपीस इज एट 91.53 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.37। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर, माइक से दिल तक आप ट्रीम के साथ, इट्स हॉट।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब है।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलाबार गोल्ड एंड

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: अरिजीत सिंह की ये खूबसूरत आवाज में कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक राइटर और मिर्ची, और मिर्ची घड़ी में वक्त हो रहा है कि हम अगला गेम खेलें, लेकिन उससे पहले घड़ी का इशारा कर रहा है 8:39 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज पिछले घंटे में मैंने इतना डिफिकल्ट सा सवाल पूछा था आपसे कि आप सच में सोच में पड़ गए थे कि भाई आफरीन आज तो भाई चुन के ऐसी मूवी लेकर आई है, लेकिन अब भी ऐसे ही कुछ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। यस, मूवी की कहानी लेकर आई हूँ मैं बॉलीवुड की, और आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। सो हियर इट गोज। एक चार्मिंग आर्कियोलॉजिस्ट टाइप लड़का है जो एक जमींदार के घर जाता है। सबको लगता है कि ये एक कल्चर्ड, एजुकेटेड और परफेक्ट दामाद मटेरियल है। लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी का प्रोफेशन आर्कियोलॉजी नहीं, कुछ और होता है। और एक दिन रिवील होता है कि जिस इंसान से लड़की प्यार करती है वो असल में तो वो है ही नहीं, और वो असल में कोई और यानी चोर होता है और एक दिन गायब हो जाता है। और फिर इंटरवल के बाद में कहानी कुछ नया मोड़ लेती है। अब वो क्या लेती है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप बताओगे मुझे कि आफरीन आखिर कौन सी मूवी की बात कर रही है। 5000186 थोड़ी सी पेचीदा मूवी लग रही होगी आपको, है ना, लेकिन इसके गाने बड़ी खूबसूरत थे। चलिए सोचो सोचो, सोच ना सके गाना सुन लो। व्हाट्सएप नंबर है 5000186, इंतजार है आपकी जवाबों का। मिडवाइल अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में गाना एंजॉय कीजिए। और मिर्ची थॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अरिजीत सिंह, जब ये गाना मैंने सुना था आपकी आवाज में, मुझे शौक लग गया था ऑनेस्टली। वेल, पद्मावत का ये गाना बिनते दिल रियली डिडंट साउंड लाइक अरिजीत सिंह। मतलब तुम्हारा तो रेंज ही अलग है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज तो जरूर है, हम मिस तो जरूर कर रहे हैं ना अरिजीत की आवाज इन दीज न्यू फिल्म्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज बड़ा मजे का सवाल पूछा था मैंने। मुझे मजा तब आता है जब आपके ना अलग अलग जवाब आते हैं उस सवाल के, सो दैट्स व्हेन आई फील के हाँ चलो अब मैंने चार लोग को कंफ्यूज कर लिया, मेरा दिन तो सब सही जाने वाला है। सो वेल, आज मैंने मूवी की कहानी सुनाई थी और आपने गेस करना था कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। सो कहानी कुछ ऐसी है, एक चार्मिंग आर्कियोलॉजिस्ट टाइप लड़का है, जमींदार के घर जाता है, सबको लगता है कि ये कल्चर्ड है, एजुकेटेड है और परफेक्ट दामाद मटेरियल है, लड़की को भी प्यार हो जाता है इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी का प्रोफेशन आर्कियोलॉजी से ज़्यादा कुछ और है, और एक दिन रिवील होता है कि जिस इंसान से ये लड़की प्यार कर रही है वो असल में तो चोर है। अब हीरो एक दिन गायब हो जाता है, दिल टूट जाता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इंटरवल के बाद में इनकी मुलाकात फिर से होती है। बस बताइए कौन सी मूवी है ये वो एक्टर की मूवी है जो वैसे तो बहुत ही ज्यादा लाउड किरदार के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये मूवी में एकदम हृदय परिवर्तन या फिर पूरा कैरेक्टर परिवर्तन किया था इन्होंने, और बड़े ही सोबर रोल किया था। 5000 1896 पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, जहाँ मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, सफ़ा का मैसेज है, देन आई हैव योर समन सेइंग दीवाने हुए पागल, ना जी ना ये नहीं है इम्पा, इट्स नॉट दैट, ताहिर का मैसेज है, जाहिद का मैसेज है, लीना का मैसेज है, एवरीवन सेज दैट आफरीन ये मूवी जो है ये रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा की लुटेरा मूवी है। और मैंने आपको पहले कहा था कि भले चाहे मूवी इतनी पॉपुलर ना हुई हो, लेकिन इसके गाने बहुत ही प्यारे और फेमस है। अच्छा, आई हैव अ वेरी फॉन्ड मेमोरी कि जब मैं मुंबई में रहा करती थी तो मेरे गाड़ी का प्लेलिस्ट ऑन लूप लुटेरा के गाने हुआ करते थे। आप भी इंजॉय कीजिए मोनाली ठाकुर की आवाज में ये गाना, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh Maal.
2: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो कैसा है ना, सेल का नाम सुनते ही कुछ लोगों का दिल नहीं, उनका बैंक अकाउंट धड़कने लगता है। और फिर हम खरीद लेते हैं वो चीजें जिनकी उस वक्त पर तो बड़ी जरूरत लगती है, लेकिन आज वो या तो हमारे स्टोर रूम में है, या कबर्ड के पीछे, या फिर घर वालों के ताने का रीजन बनी हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को। और आज क्या बोल दी पब्लिक, आपकी जिंदगी की सबसे यूजलेस परचेज क्या थी ये बताइए मुझे। वो चीज जो आपने बड़े एक्साइटमेंट में खरीद तो ली, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये मैंने क्यों ली, इसकी मुझे क्या जरूरत थी। जैसे जिम का कोई इक्विपमेंट, फैंसी किचन गैजेट, सेल्फी स्टिक, या ऑनलाइन शॉपिंग की मिडनाइट सेल का इमोशनल डैमेज। बताइए हमें 5000 1896 पर व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हर घर में आई एम श्योर एक चीज ऐसी जरूर होती है जो पैसों से ज्यादा गिल्ट ऑक्यूपाई करती है। मेरे लिए वो चीज मेरे घर का ट्रेडमिल है, वो चीज मेरे घर का डायसन है। अगर आपको पता है डायसन हेयर ड्रायर एक होता है, वो मैंने लिया है और तकरीबन मेरे ख्याल से 4 या 5 बार इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है यूज करने। सो बस आप मुझे बताइए आपकी ऐसी कौन सी चीज है यूजलेस परचेज जो आपको बहुत गिल्ट और रिग्रेट में डालती है। 5000 1896 Meanwhile, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 पर आफरीन है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो हो रहा है सुबह के 9:08 की तरफ और अगला गाना ज़ारा एस खान और जस मलिक की आवाज में इंतजार कर रहा है आपका और मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: बेटा घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा रे, आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा बेटे। क्या हो गया हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
2: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: जी माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ करा दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटा। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल बात कर, मैं
3: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटा।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया। चीख चीख के
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई? अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

देखो क्या है ना, इसे कोई आम बात मत समझो आप। वैसे है तो आम की ही बात, लेकिन हल्के में मत लो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को। और थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मैंगो फेस्टिवल जो है वो बड़ा धूम धड़ाका कर रहा है सुख वाकिफ में जो हो रहा है। पिछले दो साल बहुत सुपर डुपर हिट रहे हैं, और इस साल की अगर बात करें तो सिर्फ सेकेंड डे तक ही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो 21,600 विजिटर्स ऑलरेडी हो चुके थे। अब तक तो और भी हो गए रहेंगे, और बस तब तक के सिर्फ दो दिन में ही तकरीबन 18,000 किलो के आम की सेल्स हुई है। क्या आपके भी उसमें 2-3 किलो है क्या? बताइए मुझे। वेल, ये जो फेस्टिवल है ये ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ में अंटिल 27th ऑफ जून हो रहा है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग ऑफिस इन कोऑपरेशन विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कतर। और यहाँ पर अगर आप पहले जा चुके हो तो यू नो इट कि कितने किस्म के आम मिलते हैं, और सिर्फ आम ही नहीं मिलते भाई, बहुत सारे किस्म के वहाँ पे आम के जूस समझ लीजिए, डेजर्ट्स अलग अलग किस्म के, आम के अचार, एंड यू जस्ट कांट इमेजिन। वैसे हर चीज़ है, आम का कुनाफा, डोसा एंड सो मेनी थिंग। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि आम के जो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे अल्फांसो, मैं मुंबई से हूँ ना, हम लोगों को सिर्फ हापुस खाने की आदत है, ठीक है। उसके अलावा मलिका, केसर, लंगड़ा, ये सारे अलग अलग स्टेट्स के हैं आम, ये सब भी वहाँ पर मिल रहे। तो आपको बचपन से जो भी आम खाने की आदत है वो जाकर आप वहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे बता दूँ, ये जो एग्जीबिशन है ना, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला होता है, एंड बड़ा मजा आने वाला है। मतलब आप फिर रिग्रेट नहीं करना कि एक दिन पहले या लास्ट डे जाएंगे तो बोलेंगे अरे कल तो फिर खत्म हो रहा है, क्योंकि आई एम सो श्योर कि आप सिर्फ एक बार में नहीं, आपका जी भरेगा, आप 2 बार ये विजिट जरूर करेंगे। चलिए, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, मेरे मुंह में आ गया है पानी, मैं चलिए कुछ खाती हूँ। तब तक के लिए आप सुनते रहिएगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी।

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn?
1: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
5: खूब मिलेगा, मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अच्छा मुझे सच सच बताओ कि आप वॉलेट घर पर रहने पर ज्यादा पैनिक होते हैं या फिर फोन भूलने पर ज्यादा पैनिक होते हैं? देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फोन अगर घर पर रह जाए तो ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि भाई फोन ही आजकल हमारा मिनी बैंक बन चुका है, राइट? एंड कतर ने डिजिटल कन्वीनियंस को एक और लेवल अप कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि अब हिमियन कार्ड होल्डर्स एप्पल पे के थ्रू एटीएम से कैश विदड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकेंगे। मतलब फिजिकल कार्ड भूल गए, नो वरीज, अगर एटीएम इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो सिर्फ अपने आईफोन या एप्पल वॉलेट के जरिए काम हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? ये सिर्फ कन्वीनियंस की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट और सिक्योरिटी की भी स्टोरी है। एंड ये हम कैशलेस सोसाइटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कैश की जरूरत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले एटीएम तक कार्ड ले जाना पड़ता था, अब एटीएम तक फोन ले जाना पड़ेगा। That's getting even more convenient day by day. देखिए कतर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली बिल्कुल इवॉल्व होते जा रहा है। मेट्रो से पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और अब कार्ड के बिना एटीएम विड्रॉवल, क्या बात है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ जुड़े रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: Well, आपकी मॉर्निंग तो शानदार यहाँ पर हमने कर ही लिए है। Giving you the right kind of energy to start this morning. और मंडे है ना आज? हाँ, मंडे का ये ऐसा दिन है ना, मुझे याद नहीं रहता है कि मंडे, एंड आई डोंट इवन वांट टू रिमेंबर कि आज मंडे है। मुझे वेनसडे से हफ्ता अच्छा लगता है, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। चलिए मैं लेती हूँ अलविदा, मैं मिलूंगी आपको कल सेम टाइम सेम शो। अपना ख्याल रखिएगा और देखिए भाई, हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि खुश रहिए। मतलब बहुत सारी वजह दी है ना हमको ज़िंदगी ने खुश रहने की, और अक्सर वो हम भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। मतलब जब भी आपको कोई रीज़न मिले कि सही नहीं चल रहा है चीज़ें ज़िंदगी में, तो फिर लुक एट योर सेल्फ, जब आप 5 साल पहले कहाँ थे और कैसे आप 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए रहेंगे 5 साल में, जो आपको खुश रहने की बहुत सारी वजह दे सकता है। तो बस यही चाहती हूँ कि भाई सारे लोग सारी जगह पर खुश रहें और पॉजिटिविटी बस ऐसे ही स्प्रेड करते रहे। मैं हूँ आफ्रीन आपके साथ माइक से दिल तक। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सायोनारा, और सुनते रहिएगा मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ।
2: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
3: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: तेरा उस वक्त ही प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं भाई साहब, अगर वक्त की घड़ी को देखने की कोशिश करें तो मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:04.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: यार वक्त जो है ना रफ्तार की तरह कुछ ऐसे जिंदगी से आगे निकलता जा रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि कब सब कुछ शुरू होता है एंड कब खत्म. लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात जो है वो जरूर बड़ी खास है. वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ. एंड सच कहूँ, माना कि कुछ चीज़ों को आप जो है अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, एंड उसमें अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वो है वक्त. फिसलती हुई रेत को तो फिर भी आप हाथ में बंद कर लें या बांध लें, लेकिन फिसलते हुए वक्त को रोक पाना, ना यार, ये ना किसी ने किया है और ना आने वाले दिनों में ये किसी के लिए मुमकिन है. वो बात अलग है कि आने आने वाले दिनों में जितने तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसमें किसी बात को फ्रीज कर दिया जाए तो वो बात अलग है. लेकिन चलिए, जैसे कि वक्त की सबसे खास बात यही कि बुरा हो या अच्छा, ये रुकता नहीं, ये ठहरता नहीं. इसीलिए वो कहते हैं ना कि चाहे ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशंस हो, कैसे भी हालात हो, उसे कभी अपने दिल में हावी नहीं होने देना, क्योंकि अगर बातें बुरी हैं तो ये बात तो तय है कि रोशनी बनकर एक बार फिर से जब सवेरा आएगा तो ज़िंदगी में सब कुछ सुकून के तौर पर ले ही आएगा. एंड इसके साथ ही अगर बातें बहुत अच्छी हैं तो बिल्कुल ज़्यादा उसे अपने सर पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि वक्त को बदलते कभी देर नहीं लगती. तो बस यार, ज़िंदगी को हर दिन जो है ना दिल से खुशी से मस्ती से जियो, क्योंकि इंसान मरता तो बस एक ही बार है, लेकिन जीने का मौका ये जिंदगी हर दिन हर सुबह देती है. क्या कहती पब्लिक? अगर बात में है दम तो मुझे फटाफट से एक थैंक यू मैसेज भेजो. आज सुबह सुबह आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी का इतना अच्छा मैं डोज लेकर आई. 5000 1896, 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. बस ये सुनना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग इस वक्त दिल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे सुन रहे हैं, बस एक गुड मॉर्निंग मैसेज के जरिए, हाई हेलो के जरिए. एंड बाकी बातें चलती रहेंगी, अभी तो सब शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बंजारी की आवाज़ एंड अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Mirchi, burka.
2: Hallå? Hallå?
3: Ja, men vad heter du?
2: Ja,
3: men vad heter du? Ja, men vad heter du?
2: Hallå, vad heter du? Hallå, कौन बोल रहा है भाई?
3: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम है। मेरी
2: भाई नहीं आ रही भाई।
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे तुझे मुझसे कह रहा
2: बता तो दे भाई। अबे
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन नताशा?
3: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
2: अबे भाई कौन नताशा? मैं तो नताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह, और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा? अबे तो सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है, वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: फोन तूने करा, तूने
3: करा। मैंने क्या फोन? मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तो तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: अरे तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने अटवा दिया, टेंशन अलग दे दिया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कहते हैं ना कि कुछ गाने जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, तो उनमें से ये एक गाना जरूर है जो मोहम्मद फैज की आवाज में अभी अभी मैंने आपको सुनाया।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि भाई साहब ATM पहुंच गए और उसके बाद ये याद आया हो, अरे यार कार्ड तो हम घर पे ही रह गया। नहीं, पुराने जमाने में आज से 5-7 साल पहले तक हमारी जिंदगी में ना ये किस्सा कई दफा हो चुका है। बस उसी तरह कि बीवी 10 बार रिमाइंड कराए कि घर आते वक्त नींबू लेने आना, घर आने के बाद याद आता है कि भैया वो तो हम लाने ही भूल गए, बाकी सारी बातें याद है। लेकिन इस वक्त अगर कतर की हम बात करें, एक बार फिर से कतर ने एक स्मार्ट स्टेप लिया है टुवर्ड्स अ कैशलेस एंड डिजिटली कनेक्टेड फ्यूचर। अगर आपके पास हिम्यान कार्ड है तो अब जो है आप बिल्कुल कैश विदड्रॉ कर पाएंगे डायरेक्टली यूजिंग एप्पल पे विदाउट इवन कैरिंग योर फिजिकल कार्ड। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अब सिर्फ आपके आईफोन या एप्पल डिवाइस और ATM, दिस इज ऑल विच इज बेसिकली नीडेड। एंड कैश विड्रॉल के साथ साथ अगर बैलेंस की इंक्वायरी की हम बात करें या तो फिर सिक्योरली एंड कन्वीनियंटली अपने पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की बात करें, ये भी अब आपके लिए पॉसिबल है। एंड ये इनिशिएटिव कतर सेंट्रल बैंक की ऑनगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक हिस्सा है, जिसका एम सिर्फ एक ही है कि पेमेंट एक्सपीरियंस को हम सबके लिए और भी ज्यादा सीमलेस बनाना है, सिक्योर बनाना है एंड साथ ही कस्टमर फ्रेंडली बनाना है। मतलब यार आज स्टेट में अगर आप टेक्नोलॉजी के लेवल को देखने की कोशिश करें तो पहले जो है बंदा वॉलेट घर भूल जाए तो टेंशन होती थी, अब वॉलेट भूल जाए तो चलेगा। लेकिन एक चीज है वो कभी ना भूलना, वो है आपका फोन। आपका फोन आपकी जिंदगी में उतना मैंडेट हो चुका है जितनी कि आपकी बीवी, इनफैक्ट बीवी की जरूरतों को भी अगर पूरा करना है तो एक बार उसे घर पे भूल जाएंगे तो चलेगा, लेकिन फोन को हर वक्त अपने साथ लेकर चलना। क्या कहती पब्लिक? स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, मोहित चौहान की आवाज एंड अगला खूबसूरत सा गाना, चलिए एंजॉय करते हैं आप और हम मिलकर।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
2: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

What a lovely and beautiful track it is, यार. मतलब कुछ गाने जो होते हैं ना, आपके सोल को पूरी तरह से हील करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. लापता लेडी से ये गाना जरूर है. देखिए कुछ याद हो ना हो, लेकिन इस गाने का पता ठिकाना हमेशा याद रहेगा हमें. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही कोई तो खास अपडेट है जो आप तक मैं पहुंचाना भी चाहती हूँ. वेल, अगर इस वक्त मैं अपनी कहानी की बात करूँ, कुछ अपनी जुबानी सुनाने की कोशिश करूँ, तो यार जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स अगर कभी आए ना, तो वो है साल 2022. एंड आई एम प्रीटी श्योर हमें से ना जाने कितने लोगों का सपना कतर के चलते साकार हुआ. मतलब किसने सोचा था कि फीफा वर्ल्ड कप हम लाइव विटनेस कर पाएंगे, ना ही उन मैचेस को आंखों के सामने ठीक देख पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जब किसी देश में फीफा होता है तो उसके इर्द गिर्द किस तरह का जश्न होता है, हर एक पल में ना ही हम खुद को शरीक करेंगे बल्कि हर एक सेलिब्रेशन को महसूस करेंगे. यार चलिए, कुछ उन दिनों बनाई गई यादें इस वक्त हमारी जिंदगी में कोई नया कारनामा लेकर आई हैं. वेल, अगर फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स की बात करूं तो हर एक स्टेडियम ने ना हमें बहुत खूबसूरत यादें दी हैं, पूरी की पूरी 8 स्टेडियम. और एक ऐसा स्टेडियम जहां पे बहुत सारे बेहतरीन मैचेस होस्ट किए गए, जो डेफिनेटली फीफा वर्ल्ड कप कतार की जान शान मान सब कुछ रहा, सो दैट इज एजुकेशन सिटी स्टेडियम. लेकिन इस वक्त बात यह है कि इन्हें ना इनका नया नाम मिलने जा रहा है. बिल्कुल ठीक सुना आपने, एजुकेशन सिटी स्टेडियम जो है अब बन चुके हैं QNB एजुकेशन सिटी स्टेडियम. एब्सोल्युटली, कतर फाउंडेशन एंड QNB ग्रुप ने अग्रीमेंट साइन किया है, इसके बाद अब जो है इसका नाम रीनेम कर QNB एजुकेशन स्टेडियम हो चुका है. एंड दिस मार्क्स अ न्यू चैप्टर फॉर द कतर्स आइकॉनिक स्पोर्टिंग वेन्यूज. अब अगले इस 5 साल के अग्रीमेंट में बात इतनी है कि बहुत सारे बेहतरीन टूर्नामेंट्स इवेंट्स को अब इस स्टेडियम में होस्ट किया जाएगा. देखते हैं इस नई पार्टनरशिप के साथ हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का क्या नया खजाना खुलने वाला है. जबकि कतर में कोई ना कोई अच्छी पार्टनरशिप होती है तो आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका डायरेक्ट मुनाफा किसी को होता है तो यहाँ की आवाम यानी कि जनता को. आम बातें हो लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बड़ी खास दी जाती है. चलिए इस बहाने आपसे एक सवाल किया जाए. फीफा वर्ल्ड कप कतार के अगर 8 स्टेडियम्स की मैं बात करूं जहां पे मैचेस होस्ट किए गए थे, क्या आपको उनके नाम याद है? जितने भी आते हैं मुझे फटाफट से लिख कर या बोल कर भेज दें 5000186 पर. 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल केकी की आवाज एंड अगला प्यारा सा गाना एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। वैसे आपको इस बात की खबर है या नहीं है?
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर मैं कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप को याद करने की कोशिश करूं, तो यार एक बात जरूर याद आती है, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि वो 8 आइकॉनिक स्टेडियम्स जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर फीफा वर्ल्ड कप कतर के ओपनिंग मैच को हम याद करने की कोशिश करें, दैट इज कतर वर्सेज इक्वाडोर, अगर आपको याद हो तो वो होस्ट किया गया था अल बैत स्टेडियम में। मतलब लोगों ने सीधा अपने घर बुलाया था, बैत का मतलब वही तो होता है। एंड दिस ग्रैंड फिनाले ने दुनिया को पूरी तरह से कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया। अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस, वो हुआ था लुसेल स्टेडियम में। क्या फिनाले था यार। एंड आज वर्ल्ड कप के लगभग 4 साल बाद भी इन स्टेडियम्स की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लुसेल स्टेडियम जो है अभी भी कतर की स्पोर्टिंग आइडेंटिटी का क्राउन ज्वेल बना हुआ है एंड फ्यूचर इवेंट्स होस्ट कर ही रहा है। एंड वही अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिटी स्टेडियम की, जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया, अब वो बन चुका है QNB एजुकेशन सिटी स्टेडियम। ये अब यूनिवर्सिटीज एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मेजर हब बन चुका है। एंड इसके अलावा अगर हम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें, अहमद बिन अली स्टेडियम, अल जनूब एंड साथ ही अल थमामा स्टेडियम की, तो यहां पर रेगुलरली फुटबॉल मैचेस होस्ट किए जा रहे हैं एंड साथ ही नेशनल इवेंट्स भी यहां पर होस्ट किए जा रहे हैं। जबकि अल बैत स्टेडियम जो है कतर के मेजर स्पोर्टिंग कैलेंडर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। क्या बात है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, यानी कि स्टेडियम 974 की। देखो, वर्ल्ड कप के दौरान सबको बताया गया था कि इस स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और इसके साथ ही इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है, स्टेडियम ने कहा कि भाई साहब, एक बार जो मैं अपनी तशरीफ कतर में टिका चुका हूं, कोई हाल नहीं कि मैं यहां से छोड़ के किसी को जाऊं। तो 974 ना सही, लेकिन बहुत सारे वो डब्बे जो है ना, आज भी पूरी तरह से टिके हुए हैं एंड ये स्टेडियम कतर की आन बान शान तीनों बनकर हमारे बीच आज भी मौजूद है और यही कहता है, यही हूं मैं। पर सच कहो यार, कतर ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया था, उसने स्टेडियम्स को मॉन्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक लिविंग स्पेसेस बनाया था। एंड आज भी जब आप इनके पास से गुजरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे 2022 की वही फुटबॉल की यादें, वही फीवर जो है ना, आज भी आवाज बन कहीं ना कहीं हवाओं में मौजूद है। एक बात बताएं कि आपको मौका मिला था कि आप किसी स्टेडियम में जाकर मैच लाइव विटनेस कर सकें, तो किस स्टेडियम में गए थे आप? 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतर या Mirchi Anshu। मीनवाइल अक्षत की आवाज नादानियां ना करते हुए ये गाना ही सुन ले। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi Helpline.
1: Oh yes, it's Mirchi Helpline. Tell me.
0: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
1: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम फीचरिंग द स्टनिंग दीपिका पादुकोण एंड साथ ही शाहरुख खान। यार किसी का डेब्यू ही शाहरुख खान के साथ हो तो उसकी जिंदगी में हर वक्त शाहरुख, जो कि सिनोनिम है सक्सेस का, वो ना हो तो फिर क्या ही हो?

0: देखिए यार, अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के जरिए नहीं आती, अगर उन्हें जेन्युइनली कोई टाइटल मिलना चाहिए तो वो है टाइमलेस लेगेसी। और अब बस ऐसी कोई फिल्म है जिसकी दास्तान मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ एक डायलॉग के जरिए, जिसे आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड बस मुझे ये बताएंगे कि ये बातचीत दो लोगों के बीच हुई तो हुई किस फिल्म में, एंड साथ ही आइकॉनिक सी इतनी खूबसूरत सी फिल्म है तो है कौन सी। बिलीव मी यार, बॉलीवुड फैन हो, लवर हो, पिक्चरें देखना पसंद करते हो तो शायद ही आप ऐसे कोई शख्स हो जिसने ये फिल्म जो है वो ना देखी हो। तो भाई बातचीत सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्या कहती पब्लिक, लेकिन आप भी तैयार हो करेक्ट आंसर देने के लिए। 5000 1896 we will get connected there. Instagram Mirchi, One Kataria Mirchi Anshu, and most importantly I would really truly appreciate your audio message. Here we go.
1: मैंने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि वो स्टूपिड अमन मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है।
2: कल ही तो मिला है, तुम्हें इतना कैसे इरिटेट कर सकता है?
1: बताऊं क्या बोल रहा था मुझे?
2: क्या?
1: You won't believe this, कि मैं हंसती नहीं हूँ, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे जीना नहीं आता।
2: नैना, ये सब सच है।
1: I know, पर मैं उसकी क्यों सुनूं?
2: 2 cream bagels please.
1: Low fat. मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है जो कूल है, हैंडसम है, सेक्सी है।
0: ऑलराइट, एंड आप मुझे अब ये बताएंगे कि ये दो लोग हैं तो हैं कौन, एंड साथ ही बातचीत हुई तो हुई किस फिल्म में। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। यार नैना, रोहित एंड अमन की कहानी ना पहचानी फिर तो फिर क्या ही जाना। नानसामी की आवाज एंड ये अगला गाना मीनवाइल आपके रास्ते। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए. हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे हैं भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: बड़ा आप रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप.
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको.
2: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बेटा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
2: सर. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी. एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता
1: है कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा वो बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स पटाक. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेड.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
6: गलती भी हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी थी.
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: देखो लंदन का तो मुझे नहीं पता, तनुवत्स मनी का ये गाना है, लेकिन अगर मैं कहीं रहती हूँ तो वो है आपके दिल में। मिर्ची अंशु। आप लंदन जाने का किसी का दिल करे तो क्यों ही करे, जब आप जैसे इतने प्यारे लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर कतर में हर वक्त जुड़े हुए रहते हैं। क्या कहती पब्लिक, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। हाँ जी, तो आपसे कुछ देर पहले कोई तो कॉन्वर्सेशन थी, बातचीत थी जो मैंने आप तक पहुँचाई थी, एंड आपको बस मुझे आइडेंटिफाई करिए, बताना था कि ये दो लोग हैं तो हैं कौन, एंड साथ ये फिल्म है तो है कौन सी। एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से मैं कॉन्वर्सेशन फिर से सुनाती हूँ। अभी भी सुनते सुनाते अगर आपको लगे कि आपने पहचान ही लिया है कि फिल्म का नाम क्या है, तो फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर भेज ही देना 5000 1896। हम यही कनेक्ट करेंगे, क्या कहती पब्लिक, सो हियर वी गो।
1: मैंने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि वो स्टूपिड अमन मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है।
2: कल ही तो मिला है तुम्हें, इतना कैसे इरिटेट कर सकता है?
1: बताऊं क्या बोल रहा था मुझे?
2: क्या?
1: यू वोंट बिलीव दिस कि मैं हंसती नहीं हूं, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे जीना नहीं आता।
2: ये सब सच है।
1: आई नो, पर मैं उसकी क्यों सुनूं?
2: Two cream bagels, please.
1: No fat. मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है।
0: Alright, बिल्कुल आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, हम इस बात पे 101% अग्री करते हैं। जनता जनार्दन, क्या आपने पहचाना कि ये खूबसूरत सी फिल्म है तो है कौन सी, एंड साथ ही ये अमन जिन की बातें हो रही हैं वो है तो है कौन। देखते हैं लोग बाग का कहना है तो क्या ही कहना है।
3: Morning, this is Praveen Sharma. The movie name is Kal Ho Na Ho, and actor is Saif Ali Khan and actress is Preeti Zinta. Have a great day ahead. Bye bye.
0: क्या बात है यार, एब्सोल्युटली आपने जो पहचाना वो पूरी तरह से सही जाना। क्या बात है जी, जितने लोगों ने लिखकर भेजा, जुनैद, यूसुफ, अमृता, पूजा, साक्षी, यार बहुत सारे लोग हैं, आप सबको दिल से थैंक यू यार, बहुत बहुत सारा थैंक यू। उस फिल्म की बात करें तो क्या खूबसूरत सी फिल्म यार, अमन की कहानी, नैना की कहानी, रोहित की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो कि रिलीज हुई साल 2003 में। इसे डायरेक्ट किया निखिल आडवाणी ने, प्रोड्यूस किया यश जौहर अंडर द बैनर ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस। एंड अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो मैंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि करण जौहर इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी कहानी जो है ना लिख सकते हैं। लेकिन इस फिल्म की जान जहां पे एक तरफ एक्टिंग एंड स्टार कास्ट रही, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की जान की बात करें तो शंकर महादेवन, एहसान नूरानी एंड लॉय, भाई आई जस्ट लव दिस फिल्म एब्सोल्युटली। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान एंड साथ ही जया बच्चन। एक बात कहूँ यार, साल 2003 की ये फिल्म ना ही सिर्फ बिगेस्ट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स बनी, बल्कि अगर अभी तक की आप बॉलीवुड फिल्मों के लिस्ट को देखने की कोशिश करें तो इस फिल्म ने जिस तरह की कहानियां हमारी जिंदगी में इम्पार्ट की है ना, सही मायने में हमें जिंदगी को हर पल जीना सिखाया है ना, जो बात हमें बताई है कि अगर आज अगर कुछ है हमारी जिंदगी में तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है प्रेजेंट, गिफ्ट इधर उधर क्या ढूंढते हो, अगर उसे ढूंढना है तो इस पल में देखो जो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद तोहफे के तौर पर आपके सामने मौजूद है। जिस बात को हम अक्सर भूल जाते यार, इंसान जो है ना कभी पास्ट की बातों को सोचकर परेशान होता है, नहीं तो फ्यूचर की पूरी कहानियां बस लिखना और बुनना ही शुरू कर देता है। और इन दोनों झमेलों के बीच अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो वो है आज का दिन। कोई नहीं जानता यार कल क्या होगा, सब कुछ इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना। सच कहूं, जहां हो, जिस पल हो, जिसके साथ हो, जो कर रहे हो उसे दिल से खुशी से मदमस्त होकर कहो, क्योंकि जिंदगी ना वास्तव में बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या पता कल हो ना। लेकिन इस वक्त मैं अगर आपको कुछ सुनाऊंगी तो सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज्ड एक बहुत ही प्यारा सा गाना अलका याग्निक एंड शानिद से गाया है फ्रॉम द फिल्म कल हो ना हो। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।

0: लगातार बार बार
1: बार बार
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Well, Abhijit ki ye khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. Bhai 90s ki nostalgia mein dive in karne ka waise maza hi kuch aur hai. Kya kehti public? Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meet Him Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And jab 90s ki baat ho rahi hai to chaliye ek bar phir se agar revisit karte hain to apne school ya college ke time ko. Bhai mujhe aisa lagta hai ki zindagi ka sabse madmast ya sabse kamal waqt agar koi guzra hai na hamara to wo tha hamara school and college ka time. Matlab zara sochi ki befikri kehte hain to kise kehte hain. Hame sirf us daur pe pata hoti thi. Duniya aa jaye ek taraf, hame chahe kuch bhi kyun na bol le lekin hame bahut achhi tarah se pata hota tha ki karna hai to kya hi karna. वो करना अगर कुछ होता था तो अपने मन का करना. माँ बाप कितना भी चिल्ला ले, टीचर कितना भी घर के बाहर या क्लास के बाहर क्यों ना निकलवा दे, लेकिन भाई साहब आपका दोस्त अगर आपकी क्लास से बाहर है, हर हाल में आपका बाहर पहुंचना जो है वो लाजमी होता था. एंड उन दिनों वो पनिशमेंट्स के दौर पे हमने कितने सपने बुने यार. स्कूल के बाद जब वो कॉलेज का टाइम आया, जब तक अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में बनेंगे तो आखिर क्या बनेंगे. एंड उस समय लगता था कि भाई साहब एक क्लास में पीछे बैठने वाला लड़का आकर करेगा तो क्या ही करेगा. एंड आज की डेट में अगर देखने की कोशिश करें तो वो क्लास का सबसे शरारती लड़का कब सबसे बड़ा सीए बन गया पता ही नहीं चला. भाई सब अच्छे अच्छे लोग ये कब डॉक्टर इंजीनियर बन गए पता ही नहीं चला. भाई उस लड़के को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई ये पता नहीं चला. और ये अपनी जिंदगी में इतना शांत और इतना सुशील कैसे बन गया ये पता ना चला. अब एक बात सुने, ये सारी की सारी कहानी सुनते वक्त जिस बंदे की शक्ल आपके जहन पे आई ना, फटाफट से अगर कुछ करना है तो उसे फोन करके बताना है कि भैया आज तेरी कहानी जो है अंशु अपनी जुबानी सुना रही थी. यही तो बात है कि जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन उन दोस्तों को यारों को कभी ना भूलना जिन्होंने आपके बचपन के दिनों को सबसे खास सबसे स्पेशल बनाया. चलिए जी, ये कहानी ये बातें तो हो गई, बढ़ते हैं अगले पावर पैक ट्रैक की तरफ. विशाल डिडलानी की आवाज, शामाली खुलगड़े का साथ. एंड एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: హలో మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: अरे अरे मामू मिर्ची हेल्प लाइन बता सवाल क्या है.
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: मोहित चौहान एंड अंतरा मित्रा की खूबसूरत सी आवाज़ है ना, आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस ट्रैक यार। मुझे ये गाना ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, फ्रॉम द फिल्म राजनीति। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आई हूँ, लेकिन साथ ही ये बता दूं भाई, भुर्जी बनाने की तैयारी जो है अपने घर में आप जोर शोर से कर लें। देखिए बात इतनी है, अगर लगे कि तुम्हारी भुर्जी नहीं बन रही है, मतलब अंडे की या तो फिर पनीर की, तो मौसम ने डिसाइड कर रखा है किसी इंसान को बाहर मेरे सामने लाकर दिखाओ। मैं बताता हूँ कि भुर्जी बनाई जाती है तो कैसी बनाई जाती है भाई। दौर जो है ना, मौसम जो है कुछ इस तरह का कोहराम हमारी जिंदगी में मचा रहा है कि एक ही बात कह रहा है, भैया घर पे भुर्जी ना बनाओगे तो इंसान की भुर्जी में बनाई दूंगा। अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें, इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 47। आंकड़ा जो है 45 से पार हो चुका है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की तरह। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 35। तो बस एसी के रिमोट को तैयार रखो, तो कोई और तुम्हारी थपेड़ खाए ना खाए, रिमोट थपेड़ खा खा के काम करना जो है ना जरूर शुरू करेगा। अप्लाई करके देखो काम करता है, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virbala, burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, देख आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा
1: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा
1: बेटे। अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
1: जानते। अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटे देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा आजा बेटे।
1: अंकल माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
2: बेटे कोई गलती हुई है देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: अरे बात मेरे बात,
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो, हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: हेलो वैसे, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल, मेरे बात कर,
2: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
1: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे?
2: कान
1: पर
2: सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे।
1: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
1: क्यों?
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्लाई रहे हो भाई?
1: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज, तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
1: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाना मिल्क लवान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतर लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
1: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
4: Call 5501-7739.
1: Gifting partner Al Mufta Group.

वेल परम्परा टंडन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक दिस फ्रॉम द फिल्म दो पत्ती. भाई कुछ गाने जो है ना आपके दिल के अंदर कुछ तो मूवमेंट कराते हैं, उनमें से एक गाना ये जरूर है. Hey, welcome back. You are listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का घोलने तो आ ही चुकी हूँ, लेकिन यार आज ना मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ. पता है क्या, मुझे ना बचपन से ही मेरे पापा ने एक बात सिखाई है कि एक्सेलेंस इस शब्द को जब हमने पहली दफा डिक्शनरी में पढ़ा, इसका मीनिंग समझा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा एक्सेलेंस जो है ना तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी खुद की एक चॉइस होनी चाहिए कि तुम्हें ये पता हो कि तुम लाइफ में जो कुछ भी करो तुम्हें उस काम को एक्सेलेंटली करना है. ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है. फिर शायद तुम खुद का ख्याल रखो, तुम किसी के साथ लॉयल रहो, तुम कोई रिश्ता निभाओ, तुम कोई काम करो, जिंदगी में जो कुछ भी करो, जब ठान लिया ना कि अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है भरपूर लगाकर पूरे दिल से उस काम को पूरे जज्बे के साथ करेंगे और हर तरह से बहुत अच्छा करेंगे, तो ये किसी और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी के लिए होना चाहिए तो तुम्हारे खुद के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा इंटीग्रल नेचर है. एंड जिस दिन जिंदगी में आपने ये करने लगे ना, इतना समझ आए, रिश्ते में अगर कभी कोई खराश भी आएगी ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पूरी शिद्दत से ईमानदारी से अपना बेस्ट दिया. आप जब कोई काम करेंगे, रास्ते धुंधले भी लगेंगे ना, तो आप उदासी या निराशा को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब आपने अपना बेस्ट दिया है तो कहीं ना कहीं जब रोशनी आएगी तो बड़ी कमाल आएगी. एंड इसके अलावा जिंदगी कभी कुछ टफ रास्ते भी देगी ना, तो आपको पता होगा कि यार इस हर्डल को तो हम बहुत अच्छी तरह से पार करेंगे, एंड उसके बाद एक बार फिर से जब जिंदगी की गाड़ी का एक्सेलरेटर मारेंगे ना तो फुल ऑन स्विंग के साथ, स्पीड के साथ हम आगे बढ़ेंगे. तो एक्सेलेंस जो है ये आपकी मजबूरी नहीं, आपका चॉइस होना चाहिए, याद रखना. अरिजीत सिंह की आवाज़, अंतरा मित्रा का साथ, यानी अगला गाना एंजॉय करते हैं. और अगर बात अच्छी लगी यार एक थैंक यू मैसेज भेज दो, 5000186. I'll be waiting for your messages. Instagram Mirchi1 Kataria Mirchi Anshu. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची 1।

साथ की खूबसूरत सी आवाज श्रेया घोषाल का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक दिस, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन इस खूबसूरत सी एक्सपीरियंस की बात भी हो जाए। आपकी जिंदगी में मिठास एंड साथ ही स्पाइस का तड़का एक बार लगा ही देते हैं। लेकिन यार इसके पहले बचपन की कोई तो खूबसूरत सी याद है जो एक बार फिर से दोहराते हैं। यार वो भी क्या दिन थे, मुझे आज भी याद है कि हमारे पॉकेट में शायद एक रुपए ना हो लेकिन हमारा दिल जो है ना काफी अमीर हुआ करता था। बात इतनी होती थी कि अगर हम में से किसी एक दोस्त के पास भी पैसा है तो राजा जो है ना हम सब एक साथ हुआ करते थे। अरे नाना उस वक्त कोई हिसाब किताब नहीं चलता था, यार तूने 50 रुपए का डोसा खिलाया या मैंने तुझे पनीर चिली खिलाई, बात बस इतनी होती थी कि भाई जिसने खरीद लिया वो डोसा जो है ना लेकिन बटेगा सब में बराबर, भले वो एक निवाला भी क्यों ना मिले लेकिन उसके चलते जो हमारा पेट भरता था ना उसे शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। अगर कॉलेज की कैंटीन की कहानी बताने की कोशिश करूं तो टूट पड़ना किसे कहते हैं हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पढ़ाई टूट के करे या ना करे लेकिन हाँ वो खाने की महफिल जो है ना टूट जरूर पड़ती थी। लेकिन आज शायद बैंक बैलेंस बड़ा कमाल है, माना कि आज के दिन में जेब में पैसे भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यादों के चलते आज दिल जो है ना खाली ज़रूर होता है। तो कोई ना यार ऐसे किसी दोस्त से ज़रूर कनेक्ट करते हैं, क्यों ना एक बार फिर से ऐसे कोई डोसे या पनीर चिली की महफिल फिर से सजाई लेते हैं, क्या कहती पब्लिक। वैसे रईस तो आज हम आपको बना के छोड़ेंगे अच्छे एक्सचेंज रेट्स के चलते। अगर आपसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आई पे मनी में 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.88 और इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.74, बांग्लादेशी टका 33.78, नेपाली रुपीज 41.37 एंड साथ ही लंकन रुपीज डंका बजाते हुए 91.53। तो बस घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कदर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

जय घोषाल ने रजत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. कुछ याद आया? मतलब यार इस गाने को सुने एंड साथ में दीपिका पादुकोण याद ना आए, आपको शाहरुख खान याद ना आए तो फिर क्या ही आए. नहीं वैसे इस वक्त मुझे कुछ और जरूर याद आ रहा है.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। भाई साहब, घड़ी का कांटा जिस ओर इशारा कर रहा है ना, इस वक्त समय को देखते हुए अगर मुझे जेन्युइनली कुछ याद आ रहा है तो वो है मेरे खाने का डब्बा। एब्सोल्युटली यार, खाने से मुझे एक बात याद आई कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपके आगे कितनी भी वैरायटी क्यों ना रखी हो, खाने पीने के ढेर सारे सामान क्यों ना रखी हो, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कम्फर्ट फूड होता है कि आपका पेट जो है ना पर्टिकुलरली उसको खाने के बाद ही भरता है। मतलब वैसे पेट तो हमें कुछ भी दे दो, वो टेस्टी लजीज हो तो भर ही जाएगा, लेकिन हाँ तसली एंड सुकून जो है ना उस पर्टिकुलर आइटम से ही मिलती है। तो अगर मैं अपने कम्फर्ट फूड की बात करूँ तो मेरी जिंदगी में ये सिलसिला पूरा होता है दो चीज़ों से। नंबर वन, दाल चावल, एंड इसके साथ अगर वो आम का अचार और साथ में घी मिल जाए ना भाई, तो क्या ही बात है। वैसे मारवाड़ियों को पापड़ भी काफ़ी पसंद होता है, लेकिन मैं थोड़ी एक्सेप्शनल मारवाड़ी हूँ जिसे पापड़ थोड़ा कम पसंद है। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड डिश की बात करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो है मूंग दाल की खिचड़ी एंड उसके साथ गर्मा गर्म कढ़ी। भाई मारवाड़ियों को याद की ना, कभी कढ़ी खा के देखना। नहीं, मुझे मत बुला, अगर तुम मारवाड़ी हो तो तुम्हारे घर हम जरूर आएंगे। जस्ट सेइंग, सो दिस इज माय कंफर्ट फूड, जिसके बगैर मेरा खाना जो है 101% अधूरा है। आपके कंफर्ट फूड की बात करूं तो वो कौन सी डिश है जिसके बगैर आपका पेट जो है ना वो सुकून वाला नहीं भरता, ये मुझे जरूर बताना। 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। वैसे कतर आने के बाद डेजर्ट के तौर पर अगर मुझे खुनाफा मिल जाए ना, तो कंफर्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। जस्ट सेइंग। अरमान मलिक की आवाज, अमान मलिक का साथ, एंड अगला सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: बेचारा मंडे कितने टॉर्चर झेलता है यार हमारे। हमें लगता है कि ये हमें टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम मंडे को टॉर्चर कर देते हैं यार। कितने ताने देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, इसके आते के साथ ही मुंह बना लेते हैं और मंडे को बेमंडे बोल के एकदम ट्रॉमा में डाल देते हैं, है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मंडे है या फिर बिजली का लंबा चौड़ा बिल।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. Aur nahi to kya yaar. Bichare Monday ko hum kaise treat karte hain na. To maine socha ki kyun na aaj kuch alag kiya jaye. Dekho, Monday ke din kaam to sabhi karte hain, crib to sabhi karte hain. Lekin aaj Midday Mohabbat par na hum kaam ki baat karenge aur na hum crib karenge. हम आज मंडे के दिन मस्ती की पाठशाला करेंगे। अरे यार, बचपन में आपको याद है कितने खेल खेला करते थे हम, कितने खिलक्कड़ हुआ करते थे, खिलाड़ी हुआ करते थे। अक्षय कुमार तो कम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। तो आज मस्ती की पाठशाला में उन्हीं सारे खेलों को हम याद करते हुए बे मंडे को एकदम मन वाला मंडे बना देंगे। काय बोलतास। तो बस फिर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को मैं 90s के गियर में डाल रही हूँ। आप भी चेयर अप हो जाओ और इस बे मंडे को मन का मंडे कर दो यार। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही हैं मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
2: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मिड्डे मोहब्बत पर मंडे वाले दिन ना मस्ती की पाठशाला चल रही है और बच्चों कैसे क्या आता है कैरम। हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और मंडे तो वो सभी काम कर रहे होते हैं यार। मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम काम ना करके आराम करें यानी कि मस्ती की पाठशाला लेकर आए यार और बचपन के उन खेलों को याद करें जो कि हमने बड़े चाव से खेले हैं जिनमें से एक आता था कैरम जो अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियों में जरूर खेला करते थे। बेचारे जो कैरम बोर्ड था ये धूल खाया करता था पूरे साल और जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी ना तो भाई इसकी तो बहुत ही वक्त बढ़ जाया करती थी कूलर के सामने बैठ के जो हम दिन भर कैरम खेला करते थे। क्या मजे आते थे यार उन दिनों में भी और हमारे घर वाले भी खुश रहा करते थे कि चलो भाई सही है सारे के सारे बच्चे एक ही कमरे के अंदर बंद हैं तो हमें ना कोई टैब नहीं रखना पड़ेगा कि कौन कहां गया। दिन के टाइम पर मामूजन आते थे और हम बच्चों को कह के जाते थे कि सब के सब कूलर के अंदर ही रहना बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और हमारे साथ कैरम हुआ करता था और हम हुआ करते थे बस और क्या चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि हमारी घर की रसोई से थोड़ा बहुत रसना भी आ जाया करता था थोड़ी देर के अंदर और जिंदगी में और क्या चाहिए था यार। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है कि आज भी तो क्या ही चाहिए बस कैरम की वो रानी चाहिए होती है रानी के बाद एक कवर चाहिए होता है। और आपको याद है कैसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे हम जब भी किसी दूसरे की रानी निकलने की बारी होती थी या कवर मिलने की बारी होती थी तो बस लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे और उस पर लड़ाइयां हो जाया करती थी कि नहीं तूने वहां पे उंगली मारी इस वजह से मेरी गोटी नहीं गई है तूने कुछ किया है। फिर थोड़ी देर में हम ऊपर से लक्ष्मण रेखा खींच रहे होते थे यानी कि लक्ष्मण रेखा 2.0 हो जाया करती थी जिसको कि ऊपर से हवा में खींचा जाया करता था और तब भी अगला कहा करता था तूने जरूर कुछ किया है तूने गोटी मूव करी है पक्की बात है। वो कैरम के बोर्ड पर पाउडर लगाना गोटियों को जमाना और फिर उनको गिराना इन सारी चीजों में जो सुकून मिला करता था ना आज तो कुछ भी कर ले कितनी ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ना कर लें कितना ही खुद को पैम्पर क्यों ना कर लें वो वाला सुकून नहीं आता यार वो वाला सुकून नहीं आता जो फ्री में कूलर के सामने बैठ के एक कैरम बोर्ड पर आ जाया करता था। है कि नहीं आपके कौन से फेवरेट गेम्स हुआ करते थे बचपन के जरा मुझे डीएम करके बताना और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस।
3: तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पूरे

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Midday Mohabbat पर चल रही है मस्ती की पाठशाला on a Monday. और बच्चों छह से छुपन छुपाई. Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. हाय, वो छुपन छुपाई के दिन याद है आपको? आज तो हम कितनी ही कोशिश कर लें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ छुपन छुपाई खेलने की, नहीं खेल सकते. बचपन में खूब खेला करते थे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, अपने कजिन्स के साथ और दोस्तों के साथ खेला करते थे. यार कितना मजा आता था ना यार. कितनी देर के लिए हम छुप जाया करते थे, गायब हो जाया करते थे. और कितनी बार तो ऐसा होता था कि एक बच्चा ऐसा छुपता था कि मिलता ही नहीं था. और कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाई का टाइम हो जाया करता था, होमवर्क का टाइम हो जाया करता था, तो पूरी पब्लिक डिस्पर्स और वो बच्चा अभी भी छुपा हुआ ही है. उसको बहुत लेट पता लगता था कि उस पर सबने गिव अप कर दिया है बॉस. और फिर वो बड़ा प्राउडली निकल के आया करता था कि है मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया. लेकिन मजेदारी वाली बात ये थी कि जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे तो हम धप्पी कहा करते थे और आई स्पाइस कहा करते थे. वेल, वो आई स्पाइस तो होता ही नहीं था यार. बड़े हुए तो समझ में आया दैट वाज आई स्पाई. और धप्पी का क्या मतलब था मुझे तो आज भी नहीं समझ में आया. हम तो आज भी उसको ऐवें इस्तेमाल कर लेते हैं. जहां किसी की कोई चोरी पकड़ी जाती है हम क्या देते हैं, धप्पी. क्या कर रहे थे? बट इस धप्पी में अलग एक मोहब्बत नहीं साउंड करती है? कितना वार्म लगता है धप्पी कहना. ऐसा लगता है जैसे ये धप्पी नहीं है, बचपन की पप्पी है. कहाँ कहाँ नहीं छुपे यार छुपन छुपाई खेलते हुए. ऐसी ऐसी जगहों पे छुपे हैं ना कि जहाँ पर हमारे कपड़ों में चूने लग गए, हमारी कोनियों में चूने लग गए, लेकिन फिर भी ना खेलने से बाज नहीं आया करते थे. और हमारा बचपन तो ऐसा ही हुआ करता था यार. जब हम शाम को खेल के आया करते थे तो चूने में ही सने हुए होते थे. इतने कोनों में घुसते थे और चूने लगा लिया करते थे ना अपने ऊपर कि पूछो ही मत. आज गाड़ी में, लाइफ में, हर कहीं एडजस्ट करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन बचपन में छुपन छुपाई खेलते हुए छोटी सी छोटी जगह पर ऐसे घुस जाया करते थे जैसे इंसान नहीं बिल्ली का बच्चा है हम. और आज मिड्डे मोहब्बत पर छुपन छुपाई की बड़ी याद आई. आपको आई कि नहीं आई, डीएम करके मुझे बताना. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ए बाय द वे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे film के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। धीरे

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मिडडे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला और रिवीजन में ऊ से ऊंच नीच। हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। याद है आपको ऊंच नीच का पापड़ा जो हम खेला करते थे? पता नहीं हम ऊंच नीच का पापड़ा क्यों कहा करते थे, बट मजा बड़ा आया करता था यार। ये पापड़ा सुनने और बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। और ये ऊंच नीच का जो पापड़ा हम खेला करते थे, ये अक्सर ऑफकोर्स ऐसा होता था कि जो डेन दे रहा होता था वो बंदा नीचे होता था, और जो डेन नहीं दे रहा होता था उसे ऊपर होना जरूरी होता था, और यहीं पर ऊंच नीच का पापड़ा हो जाया करता था। किसको पता था बचपन में ऊंच नीच का पापड़ा खेलने का मतलब ये था कि जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अडल्टहुड फेस करेंगे, तो एट दैट टाइम भी काफी सारी चीजें ऊंची और नीची हो जाएंगी और वो हमें और अच्छे से संभालनी होंगी। बट पता है मुझे क्या लगता है कि ये जो हम सारे गेम्स खेला करते थे ना बचपन में, ये जो सारे के सारे खिलाड़ी हम बने हैं ना, उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और हमारा अलर्ट रहना जो है ना वो बड़ा सटीक हो गया। आपको नहीं लगता कैसे, मतलब हम अपनी दोनों आंखें तो जो आगे की हैं उनको खुली रखते ही रखते थे, ऐसा लगता था कि पीछे भी आंखें हैं। और मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी पोजिशनिंग होती थी और जिस तरीके से हम खड़े हुआ करते थे कि बस जरा कोई नीचे पैर रखे और हम पकड़ ले उसको और आउट कर दे। मुझे तो आज भी याद है कि ऊंच नीच के पापड़े पे ना मैं तो एक प्लास्टिक के डब्बे पर भी चढ़ी हुई खड़ी हुई थी कि यार ये ऊंचा है फर्श से, बस जब तक फर्श पे पैर नहीं लग रहा ना तब तक हम सेफ हैं। और उस प्लास्टिक के डब्बे पर भी खुद को बैलेंस करके बैठी हूँ मैं। आजकल देखा है आपने इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है कि दो डंबल्स रखकर हील्स पहनकर बंदियां अपने आप को बैलेंस कर रही हैं। हम तो ये बैलेंस बचपन में ही कर चुके थे यार, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते हुए। आपके बचपन के कौन से फेवरेट गेम्स थे मुझे डीएम करके बताओ ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Na viața la Murga! Mirci Murga!
1: Alo? Alo?
2: Am apărit tu!
1: Alo?
2: Bai, cum vă la? Am apărit până ce-a
1: dat. Alo? Bai, cum vă la? कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: अबे अरे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है
2: क्या बात है तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा हूँ सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा
2: हूँ तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसा रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने आसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न
4: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Midday Mohabbat par masti ki paathshala mein agle paath ka revision is Par se pakdam pakdai. Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। पहले तो मुझे ये बताओ मेरे यारा कि ये सारे नाम किसने रखे हैं यार हमारे बचपन के गेम्स के, कितने प्यारे नाम हैं। पकड़म पकड़ाई, हाँ, इट्स सो फनी राइट नाउ अगर इसके बारे में सोचो तो। लेकिन यार ये कितना प्यारा, कितना क्यूट नाम है, बड़ा ही मासूम सा नाम में इतनी मासूमियत है, और खेल में भी काफी मासूमियत हुआ करती थी। बस ऐसे दौड़ते थे हम डेन देते हुए जैसे कि कोई रेस का घोड़ा हो, और कोई चीज नजर ही नहीं आती थी, बस वो इंसान नजर आता था जिसको जाके हमें पकड़ना है। क्या जोश और फुर्ती से भागा करते थे। आज तो अगर वॉक करने की भी बात कर दी जाए ना तो लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं भाई टू मच हो गया, और तब ओए होए क्या लखन थे हमारे यार, इधर से उधर और उधर से इधर फुल फुर्ती के साथ। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसके लिए हम कह सकते थे कि यार इसके अंदर फुर्ती नहीं है, सारे के सारे एक बराबर हुआ करते थे। और जिसमें ज्यादा फुर्ती हुआ करती थी वो तो ऑफ कोर्स देर से डिनर बनता था, और जब डिनर बन जाया करता था ना तो जल्दी फ्री भी हो जाया करता था, फटाक से पकड़ लिया करता था यार। लेकिन अब पकड़म पकड़ाई से मुझे एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि बड़ी जल्दी डेन खत्म हो जाया करता था। मतलब ऐसा होता था कि जैसे ही हमें पकड़ना शुरू करना होता था ना उतनी देर में सारे इधर उधर भागने लग जाया करते थे, और कोई ना कोई तो हाथ आ ही जाया करता था। इस गेम में ना सब्र की जरूरत थी ना वेट करने की जरूरत हुआ करती थी, बस भागो दौड़ो और अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर आप इंसान को कितनी जल्दी पकड़ सकते हो पकड़ लो। जस्ट लाइक लाइफ राइट नाउ, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, कोई अपनी चाहत को चेस करता हुआ उसे पहले हासिल कर रहा है, कोई अपनी चाहत को चेस करता हुआ थोड़े वक्त के बाद हासिल कर पा रहा है। लेकिन बेसिकली वही वाली बात है कि पहले भी जिंदगी पकड़म पकड़ाई थी और आज भी पकड़म पकड़ाई है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त ने एक अलग ही सुबह में ली अंगड़ाई है। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिठे मोहब्बत पर मंडे के दिन यार हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं मस्ती की पाठशाला। और अगला पाठ है च से चिन चिन। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज जिसका चैन चैन मिटा हुआ है, वो बचपन में कभी चिन चिन खेल के चैन की सांस ले लिया करते थे। यार क्या वक्त हुआ करता था जब हम सारे इकट्ठे होके शाम को डिसाइड करते थे कि आज क्या खेलेंगे, चलो चिन चिन खेलते हैं। एक तो ये बचपन के खेल जिसमें एक वर्ड एक बार ही नहीं आता था, दो बार ही आना जरूरी होता था। मतलब हमें चैन नहीं मिलता था, हम खाली चेन बोल दे, अगर हमें चेन चेन बोलना जरूरी हुआ करता था, चेन इंटू टू। और जब हम चेन चेन खेला करते थे ना, तो वो चेन बड़ी लंबी हो जाया करती थी, वो इंटू टू नहीं रहती थी, इंटू टेन भी हो जाया करती थी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हम और हमारे दोस्त। और पता है ये जो चेन चेन गेम हुआ करता था ना, इससे एक बहुत बढ़िया सीख मिली है यार। जब आप अकेले दौड़ रहे होते हो ना, तो आप अपना फुल फोर्स लगा के दौड़ रहे होते हो, है ना, कि यार कोई साथ में जुड़ जाए, किसी को तो हम पकड़ लें ताकि हमारी चेन जो है वो लंबी होती जाए। एक जना जब हाथ में आ जाता है ना, तो लगता है कि हाँ चलो चेन थोड़ी बड़ी हुई, तो थोड़ा सा आराम हो जाता है एक और जने को पकड़ने में। और ऐसे ही करते करते जैसे ही चेन एकदम लंबी हो जाती है ना, तो वो जो आखिरी बंदा बचा हुआ होता है ना, उसको बड़ी दिक्कत होती है हमसे बचने में। खास बात यहाँ ये होती है कि चेन जितनी लंबी होती चली जाती है ना, काम उतना ही अच्छा होता चला जाता है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी लंबी चेन है, इस लंबी सी चेन का फर्स्ट से लेकर टेंथ इंसान तक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे पकड़ पाना है। अदरवाइज तो हम सारे के सारे एक साथ करके गिर जाया करते थे। ये जो सारे हमारे बचपन के खेल है ना, मुझे लगता है कि इनमें सब में ना छोटी छोटी सीख छुपी हुई थी। जैसे कि वो मॉरल साइंस के चैप्टर्स नहीं हुआ करते थे जिसमें एंड में आता था मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वैसे मॉरल ऑफ द गेम भी हुआ करते थे। इट्स जस्ट दैट कि वो तब नहीं पता थे, आज ज्यादा समझ में आ रहे, बड़े जो हो गए यार, हाय क्यों। लेकिन आप जब बड़े हो ही गए हैं, तो बचपन की यादों को ताजा करते हुए वही बचपन के खेलों के डिस्कशंस चल रहे हैं मिड डे मोहब्बत पर। आप भी मुझे डीएम करके बता सकते हो कि आपके फेवरेट गेम्स कौन से हुआ करते थे बचपन वाले। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, एंड फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100/100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Midday Mohabbat par Monday ke din chal rahi hai masti ki paathshala. Aur agla part is A se A B C D. Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और मुझे नहीं पता आप इसे ABCD बोलते थे या नहीं. मैं आपको गेम समझाती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ. सीढ़ियों पे एक गेम नहीं खेला करते थे जहाँ पर हम अल्फाबेट्स बोला करते थे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सीढ़ियों को माना करते थे. सबसे दूर होता था डी, और कभी कभी अगर बड़े बड़े और ऊंची हाइट के बच्चे खेल रहे होते थे ना तो ई भी आ जाया करता था. हमने तो यहाँ तक कि एफ भी खेला है यार. और एफ हुआ करता था वो जो फर्श हुआ करती थी, उसको टच करके वापस भागना होता था. मुझे ना ये गेम बड़ा डेंजर लगा करता था यार, क्योंकि हमें जंप करना होता था ए से डी तक या डी से ए तक. लेकिन एक बात है यार, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की दाद नहीं, पूरी बत्तीसी देनी चाहिए यार. क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी बचपन में. आज तो यार सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ही लोगों को लगता है कि एक टास्क है. एलिवेटर ले लेते हैं, एस्केलेटर ले लेते हैं. सीढ़ियां तो बेचारी एक कोने में पड़ी हुई होती है, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा होता है. हम थे यार जिन्होंने सीढ़ियों को कितना पूछा है, और कितना पूछा ही नहीं, पूजा है भाई. वहां पर हम ये गेम खेला करते थे, हमेशा सीढ़ियों पे रौनक रहा करती थी. कभी हमने सीढ़ियों को अकेला महसूस नहीं करवाया है. वैसे आप मुझे बता सकते हो अगर आप भी इस गेम को ABCD ही बोला करते थे या कुछ और. DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: हाँ जी, फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
2: हेलो.
3: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई. आप गलत मिला है.
3: वो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: भड़क आप रहो भाई, क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका. आप
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा.
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
2: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई, कुकड़ों को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिड्डे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला और वो भी मंडे के दिन. सो कम जॉइन अस बिकॉज अगला पार्ट इज ट से टीचर टीचर. हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. कहां हम अपनी टीचर्स को इतना बड़ा माना करते थे और खुद टीचर टीचर खेलने में बड़ा फक्र महसूस किया करते थे. समझ में आया कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी टीचर तो जिंदगी है यार. जैसे जैसे बड़े हुए, वक्त पलटता गया और जिंदगी समझ में आती गई, तब समझ में आया कि अरे ये तो छुपी रुस्तम निकली यार. इस जिंदगी को जिसको कि हमने गहराई से कभी समझा ही नहीं, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस को कभी अपनाया ही नहीं था बचपन में, वो तो बिल्कुल बहुत बड़ी टीचर क्या प्रोफेसर निकल कर आ गई यार. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिंदगी, बचपन में हमने टीचर टीचर बड़े मजे में खेला है यार. आई स्टिल रिमेम्बर कि किस तरीके से मम्मा की हील्स पहनकर, उनके दुपट्टे की साड़ी बनाकर एक क्यूट सा बड़ा ही बिगड़ा हुआ सा मेकअप किया करते थे और अपनी इमेजिनरी क्लास में एकदम ऐसे एंटर किया करते थे जैसे कि वाकई में हम टीचर ही हैं. मतलब वो बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल जाया करती थी. आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम इन ऑफ माई सेल्फ कि एक्टिंग तो तभी से शुरू कर दी थी बॉस, एकदम कैरेक्टर में आ जाया करती थी. एंड जब भी मैं टीचर टीचर खेल रही होती थी ना, आई यूज्ड टू बी थिंकिंग अबाउट माय फेवरेट टीचर कि वो किस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन विद अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एटीट्यूड. एटीट्यूड देना तो जरूरी होता था यार जब मैं टीचर बन जाया करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम द टीचर और बाकी सब बच्चे हैं. तुम्हें क्या पता चीजों के बारे में, वो वाला एटीट्यूड आ जाया करता था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मम्मा का पर्स लेकर बगल में एक किताब दबाकर जब क्लास में एंटर होती थी ना, तो ऐसे ही हुआ करती थी मैं. कोई कैमराज नहीं हुआ करते थे, कोई भी विटनेस भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि क्लास भी इमेजिनरी और स्टूडेंट्स भी इमेजिनरी. लेकिन फिर भी आई यूज्ड टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस बीइंग अ टीचर देयर. अटेंडेंस रजिस्टर भी हुआ करता था बॉस, और नाम भी लिखे जाते थे, उन नाम के आगे हम टिक भी लगाते थे और नाम पुकारे भी जाया करते थे. पुकारती भी मैं थी और जवाब भी मैं ही दिया करती थी. बस फर्क ये था कि पुकारती मैं टीचर की आवाज में थी और जवाब मैं स्टूडेंट की आवाज भी दिया करती थी, जैसे कि नेहा प्रेजेंट मैम. माय गॉड, तब तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था यार. आज अगर सोशल मीडिया पे ये चीज कवर कर ली जाए ना, फट से वायरल हो जाएगी वाकई में. लेकिन तब हम वायरल होने के लिए नहीं किया करते थे यार ये सब, बस अपने मन के लिए किया करते थे, खुद को खुश रखने के लिए किया करते थे और बस किया करते थे यार. जताया नहीं करते थे दुनिया को कि हम कुछ कर रहे हैं. आपके कौन से बचपन की फेवरेट गेम्स हुआ करते थे, मुझे जरा डीएम करके बताओ ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Krishna aur Saleem ki awaaz mein Chak De India se this gana is cassette ke side B ka panchwa gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: कौन कहता है कि पेट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ जोशीले ही होने चाहिए। चक दे इंडिया का जो ये गाना है, इसने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि पेट्रियोटिज्म में सिर्फ और सिर्फ जोश भरा हो। पेट्रियोटिज्म में रोमांस भी होता है बॉस। और ये जो इतना खूबसूरत गाना है, मौला मेरे ले ले मेरी जान, ये इस बात का पूरा पूरा एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी धरती से, अपने देश से मोहब्बत करते हो ना, तो वो इश्क भी माना जा सकता है। एंड दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग साउंड्स लाइक कि एक इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार अपने देश, अपनी धरती, अपनी माटी से कर रहा है। गाने की ये लिरिक्स जहाँ ये कहा गया है कि तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, यानी कि तेरे तिरंगे का तीसरा रंग मैं था, मैंने अपनी जिंदगी तेरे अकॉर्डिंग जी है, तू ही मेरा खुदा है और तू ही मेरी शान है। फिर ये बात कि तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फेर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। एंड इट ऑल स्पीक्स अबाउट द लव फॉर वंस कंट्री, जैसा कि इस फिल्म में बताया भी गया था कि किस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन अपनी कंट्री को इतनी मोहब्बत करता है और किस तरीके से एक गलतफहमी के चलते उस इंसान पर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता। वहीं ये सारी बातें अप्लाई होती हैं जहां वो अपने देश से ही कह रहा होता है कि तेरे संग होली खेली, तेरे संग दिवाली खेली, तेरे अंगने की छाया में जिए, तेरे साथ सावन जिया, भले ही तू नजरे चुरा ले, लेकिन तू लौट के वापस आएगा ये देश। और इसी के साथ जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ, सो एंजॉय द ट्रैक। और मैं कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यस बस बोलो गौरव, आपको यहाँ बताना चाहता है कि कतर पुलिस ने पब्लिक को रिमाइंड किया कि अगर कभी वो रोड एक्सीडेंट देखें तो उसकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपलोड ना करें। एक्सीडेंट रिपोर्ट करनी भी है तो ऑफिशियल मेत्राश ऐप पर जाकर या अथॉरिटीज के चैनल को यूज कर वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बकायदा कैप्टन अलशमारी साहब ने क्लियर किया है कि हमारे कतर में आप फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। मेत्राश में व्हीकल नंबर प्लेट और एक्सीडेंट की अप टिल 4 फोटोज आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसेंजर या फिर इन्वॉल्व लोगों की फोटोज नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट का कोई भी कॉन्टेंट अगर आप शेयर करते हो तो 10,000 कतरी रियाल तक का पेनाल्टी फाइन आप पर लग सकता है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कम्युनिटी और पुलिस पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम करती है, तो हमारी हॉटलाइन जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर लो। लेकिन ये याद रखो कि एक्सीडेंट देखा जल्दी से फोटो डाल के व्यूज और लाइक के चक्कर में अगर आओगे तो व्यूज और लाइक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके चक्कर में आपको जेल का व्यू भी मिलेगा। हाँ जी, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक्सीडेंट को कॉन्टेंट मत बनाओ, उसे एक रिपोर्ट की तरह बनाओ, मेत्राश पे अपलोड करो। लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल राइट्स और प्राइवेसी ऑफ पीपल, आप उसको रिस्पेक्ट करो। 89.6 मेरे जीवन पर, मैं हूं आरजे मस्मोल गौरव, याद दिला दिया मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और आज मैं एक ऐसे लेजेंड की बात करने जा रहा हूं जिससे अपने डेब्यू मैच में 45 सेकंड्स के अंदर रेड कार्ड मिल गया था। मस्त मौला गौरव बात कर रहा है द गोट लायनल मेसी की। अर्जेंटीना का ये सुपर डुपर खिलाड़ी एक टाइम पर साल 2005 में 17th ऑफ अगस्त के दिन डेब्यू करने उतरता है अगेंस्ट हंगरी। मैच में 45 सेकंड ही हुए होते हैं कि आप एज अ सब्स्टिट्यूट मैदान में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपोजिशन के गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनका डिफेंडर विल्मोस वेंजक जो है इन्हें रोकता है। फिर क्या है, मेसी अपना हाथ घुमाते हैं ताकि वो अपनी शर्ट छुड़ा पाए, लेकिन इस चक्कर में विंजक को गाल पर मेसी का हाथ लग जाता है। रेफरी ने 45 सेकंड मैदान में आए हुए होते हैं लेकिन रेड कार्ड दिखा देता है, पर मेसी बिल्कुल गुस्साते नहीं है बल्कि ये जाकर क्लोसेट में बैठकर रोने लगते हैं। और आज वो मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के करीब है, ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर इन फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यस, जर्मनी के क्लोसे के गोल के सबसे करीब खड़े हैं मेसी। 16 गोल क्लोसे ने किए हैं और मेसी अगर आज ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक गोल भी कर देते हैं तो वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन कितना स्ट्रेंज है ना, अपने डेब्यू मैच में ही 45 सेकंड्स के अंदर ऐसा सब्स्टिट्यूट आते हैं और आप रेड कार्ड पाते हैं। इसका मतलब जिंदगी में हर बार शुरुआत बड़ी ड्रीम भरी नहीं होती, वो सपनों वाली शुरुआत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में शुरुआत रेड कार्ड से होती है, लेकिन फिर अपने करियर को कलरफुल बनाने का जिम्मा आपको ही लेना होता है। सो मेसी ने वो किया और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी हर बार ड्रीम स्टार्ट हो ये जरूरी नहीं है, पर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हर बार स्टार्ट से एकदम जबरदस्त मेहनत करनी होती है, जो मेसी ने की है। ऑल दी मेसी फैंस, ऑल दी बेस्ट, आज आपके मेसी इतिहास रचे यही हम कहेंगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
1: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यस, अरबिक डायलेक्ट में माय मतलब पानी को भी बोलते हैं। यस जी, माय अकल माय यानी कि हमें पानी दो। एंड मैं इतनी कहूंगा, मौसम जिस हिसाब से बन रहा है दोस्त, पानी जरूर पियो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: वैसे तो आज 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और मिनिमम अराउंड 30 आएगा। आज जबरदस्त वाली गर्म हवाएं भी चल रही हैं जिनकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी हुई है। पर दोस्तों, घबराना नहीं है, हर घंटे के साथ पानी पीने की कैपेसिटी को बढ़ा लेना है ताकि आप इस गर्मी से जो आप जूझ रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ी और ताकत दे आपको, और वो तभी होगा जब आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। इस उम्मीद में कि मेरी बातों का आप ध्यान रखते हैं, पानी पीकर अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखते हैं। मस्मोल गौरव आगे बढ़ता है अगले घंटे की तरफ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: जंगल में भी ऐसा वेलकम होता है, ये वेलकम टू द जंगल गाने से पता लगता है। मस्त मौला गौरव आपके साथ, देवी और सजनों, शाम के 5:04।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: क्या आप उन लोगों में से हैं जो मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर घंटों बाद जाकर देखते हैं कि आपने चार्जर का स्विच ही ऑन नहीं किया था और मोबाइल डेड है? या फिर आप उन लोगों में से हैं जिसने वॉलेट्स के पैसे रखने की बजाय अपने पॉकेट में नहीं रख दिया और धुल के आया तो सोच रहे ले ये कहां से आ गया? बिल्कुल मिलाकर अगर आप भुलक्कड़ हैं तो आप मस्त मौला गौरव के भाई हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत थी और इस चक्कर में कई बार आप पैसे ले जाना भूल जाते थे तो अब आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि कतर में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कतर सेंट्रल बैंक ने। यस, उन्होंने कहा है कि अब आप एज अ कस्टमर एप्पल पे और हिमियन कार्ड टोकनाइजेशन के जरिए कॉम्पैटिबल एटीएम्स पर पैसे निकाल पाएंगे विदाउट योर फिजिकल डेबिट क्रेडिट कार्ड। यस, मतलब अगर वॉलेट घर पे रह गया, कार्ड घर पे रह गया तो भी आप एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। ये कतर के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के डायरेक्शन में एक सबसे बड़ा गेम चेंजर मूव है, मैं यही कहूंगा। लेकिन असली चैलेंज तो अभी भी फंसेगा दोस्त। मान लीजिए आप मोबाइल लेके पहुंच गए, आप वॉलेट लेना भूल गए, लेकिन आप तो उसमें से हैं जो मोबाइल के चार्जर को भी ऑन करना भूल जाते हैं और बैटरी 1% रह गई, तब क्या है? तब वही है, दोस्तों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बुलाना ही पड़ेगा, तभी पैसे मिल पाएंगे, वरना भरे मार्केट में गरीबी का रोना आपको रोना ही पड़ेगा। 89.6 मिर्ची 1 पर इस जबरदस्त स्टेप के लिए जोरदार तालियां हो जाए कतर सेंट्रल बैंक के लिए। ये आने वाले टाइम का अब तक का सबसे बड़ा मूव साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 89.6 मिर्ची 1, अब तो पार्टी भी लेंगे दोस्तों से, कोई बहाना नहीं चलेगा। इट्स हॉट। अच्छा।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक?
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
3: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: हमा यार कतर में रहे और हबी भी माफी मालूम लूगा अरबी, ये तो गलत बात है। जब आप किसी भी देश में रहते हैं तो वहाँ के लोगों के वहाँ के कल्चर के करीब कैसे आ पाते हैं? लैंग्वेज की वजह से। और अगर इस लैंग्वेज के चंद शब्द आप सीख जाएं तो आप बहुत हद तक कामयाब रहते हैं दूसरों को ये कह पाने में कि हम अरब में रहते हैं, हमें थोड़े अरबी आती है। और जरूर आनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा किस तरह से कतर में दुनिया के लोग आके अरबी बोल रहे थे। वेल, ऐसे में हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम अरबिक लैंग्वेज को जिस हद तक सीख पाए जरूर सीखने की कोशिश करें। और इसके करीब आने का एक मौका अब आपको और मिल गया है। दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ द अरबिक लैंग्वेज ने अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटेड टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस लॉन्च की है। यस, और इस सर्विस के अंतर्गत क्या होगा, आप अब बकायदा जो भी अरबिक वर्ड है उसकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल ठीक तरीके से सीख पाएंगे। और ये आपको सीखने को भी मिलेगा और समझने को मिलेगा, और एकदम करेक्ट स्टाइल में उसे किस तरह से कहा जाता है ये आप ऑडियो के जरिए समझ भी पाएंगे। अब मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे वो कतर में किसी शब्द की डेफिनेशन हो, हिस्टोरिकल रेफरेंस हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, या कुरान का कोई भी वर्स, ये सब कुछ आपके लिए समझना और अरबी को सीखना और आसान बनाएगा। अगर अभी तक आप नहीं गए तो जरूर जाइए दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी में, जहां पर अब आपके लिए टेक्स्ट टू स्पीच वाली सर्विस लॉन्च कर दी गई है। अभी भी इससे आपके और हमारे लिए फी आसान लुगा अरबी। यस, आप अगर अब अरबिक सीखेंगे तो एटलीस्ट डायलेक्ट तो एकदम सही यूज करेंगे। और ये जो सर्विस आई है इसके लिए दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों को, उस टीम को जिसने इसके पीछे मेहनत की है। क्योंकि अगर हम शोए कलाम अरबी भी मतलब थोड़ा बहुत अरबी बोल लेते हैं तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
4: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

काम ऐसा करो कि दुनिया आंख बंद कर आप पर भरोसा करे। और बिल्कुल ऐसा ही काम किया था हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तभी तो आज यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में भी हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को संभाल रही है। यस, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको सबने कतर की मदद ली है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो वहां जाकर वर्ल्ड कप को एकदम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा करा पाए। और ये बताता है कि ये सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे कतर को मिला वो सम्मान है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान पाया। और अब दुनिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर भरोसा कर रही है इसी उम्मीद में कि हम जब मेहनत से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है। कतर एक बार फिर से ग्लोबली अपना इंपैक्ट बना रहा है और जिस तेजी से पूरी दुनिया कतर के हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका साथ दे रही है, वो दिन दूर नहीं जब ऐसी वजह से हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। यस, तैयार रहिए एंड प्राउड ऑफ कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी मेहनत से उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करा रही है और दुनिया का भरोसा जीत रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

यार जिंदगी का ना एक फलसफा मैंने देखा है कि जब हमें जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं, और जब जो हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए होता है वो मिलता है नहीं। अब देखिए, जैसे रेट्स अच्छे हैं, हमको भी पैसे चाहिए, मिलते ही नहीं है, और जब मिल जाते हैं तो रेट्स अच्छे नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर आपने आईपे ऐप डाउनलोड किया है तो ये शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि रेट्स अच्छे मिल जाए। हालांकि अभी भी हम अपने पैसे देने वाले दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। वेल, अगर बात करें इस वक्त एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 25.94 हैं, 25.94 रुपए भारतीय मुद्रा के मिलेंगे अगर आप एक कतरी रियाल के बदले चाहेंगे इंडियन रुपीस तो। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त श्रीलंकन रुपीस आपको मिलेंगे 91.60, पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले आपको मिलेंगे 76.71 पाकिस्तानी रुपीस। वहीं एक कतरी रियाल के बदले तपाई को नेपाली रुपीस का रेट से दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.45 का भलचा रेट दाई। हाँ जी भाई बहनी, 41.45 को नेपाली रुपीस का रेट छो, घर भेजन का पैसा राइट टाइम छो। अगर इसके बाद हम बात करें बांधु बांग्लादेशी टका का, एक्टा कतरी रियाल के बदले बांधु आईटा तो 33.80 बांग्लादेशी टका का रेट छिले। एंड आई एम श्योर अगर है घर भेजने का राइट टाइम है। मस्त बोलो गौरव आपके साथ है हबीबी, कीप लिसनिंग मिर्ची, और अगर पैसे हैं तो घर भेजो, आज रेट्स अच्छे हैं। एंड इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज आईपे ऐप पर आपको मिलती है, जहां पर आप ऐप डाउनलोड करते ही वोडाफोन माय बुक का सब्सक्रिप्शन ऐसे ही पा जाते हो भाई। डील्स ही डील्स है, मिर्ची हॉट है।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ।
0: क्यों थक रहा है, अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: जो लोग खास होते हैं वो आम खाते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि शाम के 6:04 यानी कि 2 घंटे का टाइम हो चुका है। मैंगो फेस्टिवल में कई किलो आम अब तक बिक चुके हैं। अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो लेट हो रहे हैं।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: सिर्फ 2 दिन में इस मैंगो एग्जीबिशन में लगभग 21,600 लोग पहुंचे और 18,000 किलो आम बिक चुका है। इसकी शुरुआत हुई 18 तारीख को और 18 और 19 यानी कि वीकेंड आते ही लोग टूट पड़े हैं और 18,000 किलो से भी ज्यादा आम पहले 2 दिनों में बिक गया। 21,600 लोग पहुंच गए यानी कि इस बार 1,00,000 लोगों के पहुंचने की तादाद है। अगर ऐसा है तो हम और आप अभी भी पीछे हैं और इसीलिए मस्मौला गौरव से थोड़ी देर में पहुंचना ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ ताकि हम आपके लिए जाकर वेराइटी ऑफ आम की डिशेस खाकर बताएं कि आप क्या क्या मिस कर रहे हैं। वेल याद रखिए, हम आपको बताना चाहेंगे ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ में अंटिल 27 जून ये जबरदस्त मैंगो सेलिब्रेशन चल रहा है और सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग ऑफिस इन कोऑपरेशन विद एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये लेकर आए हैं, जहां पर इंडिया के अलग अलग प्रांतों से मैंगो की अलग अलग वैरायटी आ रही है और मैंगो से रिलेटेड ढेर सारे प्रोडक्ट यहां आप चख पाएंगे, चाहे वो मैंगो शेक हो, मैंगो की डिशेज हो, मैंगो डोसा हो, मैंगो इडली हो, मैंगो मोमोज हो। चाहिए क्या, आपने मैंगो के जितने सपने देखे हैं वो सारे डिशेज में मिलकर बन जाएंगे। तो अगर अभी तक आप नहीं पहुंचे जरूर पहुंचिए, मस्मौला गौरव अपनी मिर्ची टीम के साथ पहुंच रहा है, आपसे थोड़ी देर में वहां मुलाकात होगी। तब तक ले आप सुनते रहिए मिर्ची, हम आम बनकर, हम आम जाकर खाएंगे और खास बन जाएंगे मिर्ची थॉट।

0: हेलो
1: हेलो मिस्टर अनिल।
0: हाँ जी
1: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
0: तीनों आ गए?
1: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
0: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
1: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी फिर?
1: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
0: हेलो?
1: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
0: नहीं भैया आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है,
1: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
0: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
1: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
0: कौन बोल रहे भाई?
1: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
0: भड़क आप रहा भाई, क्या तरीका है,
1: क्या तरीका
0: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
1: अनिल बंसल आप ही हैं?
0: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
1: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं, अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
0: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम।
1: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
0: बात करो, एक तरीका बात करने का
1: यार, तरीका आप।
2: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
0: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर।
1: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
0: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
1: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
0: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
2: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा से जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
0: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई, कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: ये पकड़।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाडना मिल्क लबान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
7: Call 5501-7739.
6: Gifting partner Al Mufta Group.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
7: Love is my biggest fear because for me, love is death.
6: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
8: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
6: Catch Officer Brown.
9: Officer Brown
6: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
10: अर्ज किया है
11: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: पर मैं हूँ आरजे मस्मोल गौरव एंड सुख वाकिफ के थर्ड मैंगो एग्जीबिशन में हम किसके साथ हैं?
1: मिर्ची ईशा के साथ। और मुझे ना मिर्ची की बजाय ना मीठाई मिल रहा है और इतना स्वाद, अभी कलाकंद खा के आ रही हूँ। मेरी रूह कांप गई यार, निकल
0: रही। आप तो कलाकंद खा रही है, यहाँ लोग खा रहे हैं मैंगो मोमोज, मैंगो पनीर टिक्का,
1: मैंगो चिकन,
0: मैंगो पिज्जा,
1: मैंगो डोसा।
0: भाई देखिए, अगर ये सारी वैरायटी खानी है, थर्ड मैंगो एग्जीबिशन जो कि हमारी इंडियन एम्बेसी लेकर आई है एट ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ, पहुंच जाइए। 27 जून तक ये मेला रोज शाम 4 बजे से देर रात तक रहता है। ये देखिए सोनी आइसक्रीम खिलाते हुए। फिलहाल हम तो स्वाद का बहुत बड़ा चटकारा ले रहे हैं।
1: तो जा रही हूं और खाने।
0: अरे रुको रुको रुको, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो भाई मैंगो लस्सी से लेकर मैंगो की हर वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। बस एक बार आइए सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में, जहाँ पर कतर के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे मैंगो से रिलेटेड।
1: लेकिन अपने डाइट को घर छोड़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्वीट मिलेगा आपको, इतना नमकीन चटपटा सब कुछ मिलेगा। तो अपनी डाइट को ना अलविदा कह के आइएगा।
0: ये जो डाइट पे है ना लोग, मैं बस इतना ही कहूंगा, स्टैट्यूटरी वन
2: अंडर वन रूफ,
0: ऑल इंडियन रेस्टोरेंट अंडर वन रूफ। तो हमारे कतर के सारे बेहतरीन रेस्टोरेंट आपके लिए मैंगो की ढेर सारी वैरायटी लेकर आए हैं। एक दफा आइए और डाइटिंग को घर छोड़कर और वॉलेट को जेब में रखकर आइएगा। एंड कीप लिसनिंग मिर्ची, इट्स हॉट।
3: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
4: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
3: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
4: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: पंजारे ने गा दिया बैरन गाना सुना दिया किसने और घड़ी का सुई का इशारा हो गया हमारे आखिरी घंटे में शाम के 7:03 का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड थोड़ा कान लगा के गौर कीजिए, अगर आप लुसेल ट्राम सर्विसेज यूज करते हैं तो 26 जून से लेकर जुलाई 5 तक आप ये सर्विस नहीं ले पाएंगे।
2: #974 the most trending local news of the day।
0: Yes, Qatar Rail ने अनाउंस कर दिया है कि आपको ये ट्राम सर्विसेज जो कि लुसेल में मिलती थी वो 26 जून यानी कि दिस कमिंग फ्राइडे से लेकर जुलाई 5 तक नहीं मिलेगी। एंड उसका रीजन है, इस दौरान यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है अक्रॉस द नेटवर्क, यानी कि इस पूरे लुसेल ट्राम की लाइन पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है जिसके चलते ये टेम्पररी सस्पेंशन ट्राम सर्विसेज का किया गया है। और कतर रेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू बता दिया है ये पूरा का पूरा जो एक तरह से इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है इन कोऑपरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड आई एम श्योर ये आने वाले टाइम में पैसेंजर सर्विसेज को और एनहेंस करेगा। हमें और आपको इस नेटवर्क पर आने वाले टाइम में कुछ और ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको भी बता दें कि इस दौरान आपको ये नहीं घबराना है कि टैक्सी करनी है, आपके लिए रिप्लेसमेंट बस सर्विसेज ऑपरेट करेंगी फ्रॉम लेक तफिया स्टेशन टू तरफत साउथ स्टेशन और ये लगातार चलती रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो मेट्रो एक्सप्रेस की एग्जिस्टिंग बसेस थी वो भी चलेंगी एंड एक न्यूली लॉन्च मेट्रो लिंक रूट M154 भी ऑपरेट किया जाएगा ताकि आप डेली के एरिया जहां भी जाते हैं उसे कवर किया जा सके। तो ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके लिए बना दिया गया है। कतर रेल का ये इंपॉर्टेंट काम जैसे ही खत्म होगा आप देखेंगे कि इससे आपके लिए और ढेर सारी सर्विसेज बेनिफिट आई हैं। बट फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि लुसेल ट्राम सर्विसेज 26 जून से लेकर जुलाई 5 तक आपको नहीं मिलेगी। इसी उम्मीद में कि आने वाले टाइम में आपका सफर आसान बनेगा मेरी इस बात से मस्त मौलक और आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: बेटा अब घर आजा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते हैं बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चलाई
2: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: जी माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटा। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल, मेरे बात कर, मैं अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
3: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटा।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे,
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
7: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: अर्ज किया है
9: इरशाद, इरशाद

ये एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, ये गलती करिएगा नहीं। अरे मजदूर भाइयों, डिलीवरी सर्विस राइडर्स, आपसे कह रहा हूँ, सुबह 10 बजे से 3:30 बजे के बीच हीट स्ट्रेस से बचने के लिए अशगल का ये कमिटमेंट है कि हम किसी भी मजदूर भाई को ओपन एरिया में काम करने नहीं देंगे, और ये सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक June 1st से September 15th ईच ईयर किया जाता है, और इस दौरान मॉनिटर किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंसल्टेंट को, ताकि वो इस रूल से कॉम्प्लाई करें, यानी कि आपको ओपन में काम करने ना दें। इंजीनियर अल खैरीन साहब ने क्लियर किया है, यस, खालिद सैफ अल खैरीन साहब ने फिर से क्लियर किया है कि ये कमिटमेंट है कि हम बैन रखते हैं ओपन एरिया में वर्क का। एक टाइमिंग है जो कि 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, उस पर सभी लोगों को कॉम्प्लाई करना है। आप इसके अलावा और क्या क्या खास करेंगे? एयर कंडीशन रेस्ट एरियाज बनाने होंगे, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट देना है, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने हैं जब वो किसी भी काम पर होंगे इस बैन टाइम के अलावा। सो जो भी लोग इसके खिलाफ अगर जरा सा भी काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर कभी किसी भी चेकिंग में आप पकड़े गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से लेकर हर बड़ी अथॉरिटी आप पर कार्रवाई करेगी। तो प्लीज आप इन सारे रूल्स के साथ अलाइन रहिए, ऐसा ना हो थोड़े से लालच में आपका अच्छा खासा फतूरा हबीबी फाइन का कट जाए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और आज मैं एक ऐसे लेजेंड की बात करने जा रहा हूं जिससे अपने डेब्यू मैच में 45 सेकंड्स के अंदर रेड कार्ड मिल गया था। मस्त मौला गौरव बात कर रहा है दी गोट लायनल मेसी की। अर्जेंटीना का ये सुपर डुपर खिलाड़ी एक टाइम पर साल 2005 में 17th ऑफ अगस्त के दिन डेब्यू करने उतरता है अगेंस्ट हंगरी। मैच में 45 सेकंड ही हुए होते हैं कि आप एज अ सब्स्टिट्यूट मैदान में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपोजिशन के गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनका डिफेंडर विल्मोस वेंजक जो है इन्हें रोकता है। फिर क्या है, मेसी अपना हाथ घुमाते हैं ताकि वो अपनी शर्ट छुड़ा पाए, लेकिन इस चक्कर में विंजक को गाल पर मेसी का हाथ लग जाता है। रेफरी ने 45 सेकंड मैदान में आए हुए होते हैं लेकिन रेड कार्ड दिखा देता है, पर मेसी बिल्कुल गुस्साते नहीं है बल्कि ये जाकर क्लोसेट में बैठकर रोने लगते हैं। और आज वो मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के करीब है, ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर इन फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यस, जर्मनी के क्लोसे के गोल के सबसे करीब खड़े हैं मेसी। 16 गोल क्लोसे ने किए हैं और मेसी अगर आज ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक गोल भी कर देते हैं तो वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन कितना स्ट्रेंज है ना, अपने डेब्यू मैच में ही 45 सेकंड्स के अंदर ऐसा सब्स्टिट्यूट आते हैं और आप रेड कार्ड पाते हैं। इसका मतलब जिंदगी में हर बार शुरुआत बड़ी ड्रीम भरी नहीं होती, वो सपनों वाली शुरुआत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में शुरुआत रेड कार्ड से होती है, लेकिन फिर अपने करियर को कलरफुल बनाने का जिम्मा आपको ही लेना होता है। सो मेसी ने वो किया और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी हर बार ड्रीम स्टार्ट हो ये जरूरी नहीं है, पर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हर बार स्टार्ट से एकदम जबरदस्त मेहनत करनी होती है, जो मेसी ने की है। ऑल दी मेसी फैंस, ऑल दी बेस्ट, आज आपके मेसी इतिहास रचे यही हम कहेंगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: 99.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्मोल गौरव एंड सुख वाकिफ के थर्ड मैंगो एग्जीबिशन में हम किसके साथ हैं?
1: मिर्ची ईशा के साथ। और मुझे ना मिर्ची की बजाय ना मीठाई मिल रहा है और इतना स्वाद, अभी कलाकंद खा के आ रही हूँ। मेरी रूह कांप गई यार, निकल
0: आप तो कलाकंद खा रही है। यहाँ लोग खा रहे हैं मैंगो मोमोज, मैंगो पनीर टिक्का,
1: इवन मैंगो चिकन,
0: मैंगो पिज्जा,
1: मैंगो डोसा।
0: भाई देखिए, अगर ये सारी वैरायटी खानी है, थर्ड मैंगो एग्जीबिशन जो कि हमारी इंडियन एम्बेसी लेकर आई है एट ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ, पहुंच जाइए 27 जून तक। ये मेला रोज शाम 4 बजे से देर रात तक रहता है। ये देखिए सोनी आइसक्रीम खिलाते हुए। फिलहाल हम तो स्वाद का बहुत बड़ा चटकारा ले रहे हैं।
1: तो जा रही हूं और खाने।
0: अरे रुको रुको रुको, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो भाई मैंगो लस्सी से लेकर मैंगो की हर वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। बस एक बार आइए सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में, जहाँ पर कतर के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे मैंगो से रिलेटेड।
1: लेकिन अपनी डाइट को घर छोड़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्वीट मिलेगा आपको, इतना नमकीन, चटपटा सब कुछ मिलेगा। तो अपनी डाइट को ना अलविदा कह के आइएगा।
0: ये जो डाइट पे है ना लोग, मैं बस इतना ही कहूंगा, स्टैट्यूटरी वन
2: अंडर वन रूफ,
0: ऑल इंडियन रेस्टोरेंट अंडर वन रूफ। तो हमारे कतर के सारे बेहतरीन रेस्टोरेंट आपके लिए मैंगो की ढेर सारी वैरायटी लेकर आए हैं। एक दफा आइए और डाइटिंग को घर छोड़कर और वॉलेट को जेब में रखकर आइएगा। एंड कीप लिसनिंग मिर्ची,

0: హలో మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: అరే అరే మామూ, మిర్చి హెల్ప్ లైన్ బతా, సవాల్ క్యా హై?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं.
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.
4: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. We've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms. और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे? या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
4: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी, 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

0: एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है, और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में यह मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते, क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग संग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज।
1: नंबर 18

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो अब भाई तुम
1: भाई कौन बोल रहा है
2: अब मुझे अब पता चला
1: हेलो भाई कौन बोल रहा है हेलो कौन बोल रहा है भाई
2: अब मुझे अब बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अब मुझसे कह रहा
1: अरे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा हूँ सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता मुझे मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: पूछा तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने हंसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्लाह। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। Now Hardy Sandhu इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, पर बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 8.

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है, एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21 जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना ये है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है। स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: निमृत कौर आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आप

एक्टिंग, और राघव ने माशूका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं। है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देख कर, बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते नंबर 1।

0: देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
2: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
3: अबे लल्लू, ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिल

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत आफतें उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से चुप चुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s 2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती हैं और फिर वो एक बोलती है अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आरडी बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटीफुली सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: हेलो मिस्टर अनिल।
3: हाँ जी
4: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
3: तीनों आ गए
4: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
3: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
4: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
3: जी फिर
4: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
3: हेलो,
4: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड।
3: हाँ जी
4: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
3: तीनों आ गए
4: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की।

0: अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
0: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
1: जी फिर?
0: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
1: हेलो,
0: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड, बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
1: हेलो,
0: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है आपने।
0: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा को, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
0: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
1: कौन बोल रहे हैं भाई
0: आप? कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
1: क्या तरीका है,
0: क्या तरीका
1: है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो? लिया
0: अनिल बंसल, आप ही हैं?
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
0: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं, अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम।
0: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
1: तो बात करो, एक तरीका बात करने का
0: यार, तरीका आप।
2: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको।
1: हेलो
0: यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने।
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
0: सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
0: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
2: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शक्की हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए, पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं, उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती है कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, कहा सुना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans with Charu only.

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक क्लासिक ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है। जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आर डी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में ये जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगिनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वे सायतू, ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
1: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
0: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स ऑल
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जो मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में 3 गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और 2 गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: ओह यस इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी
1: यार, रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
2: लिख नहीं पाता हूँ क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, आशा भोसले एंड उषा उथुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उथुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उथुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उथुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: कोई यहां

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई सच अ लवली सॉन्ग, आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक, ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना, याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साडू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और साडू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज़ अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, यार एक पिक्चर में काम करना था उन्हें मेरी। मैंने कहा, मैं तो उछल गया, मैं कहा बाय नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपेयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा, आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट टू पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में, राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन्स वीन्स तो बता दीजिए। बताएंगे यार, बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्प्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो ये शेर है असद भोपाली साहब का। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी उसके गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहां सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रैपो।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये mid-80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: क्या कहा?

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज बाय आर डी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एस डी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए, एंड देन इवेंचुअली आर डी बर्मन को साइन किया गया। एंड फिर एज यूजुअल आर डी ने अपने आर डी एक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था, द वेरी आइकॉनिक, द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी, लाल, पीली, नीली कर रखी है? जिसकी भी याद में कर रखी है, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको, और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, bold art.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्ड आर्ट, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आर्ट,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में चाहे इनका नाम नहीं लिया जाता हो, लेकिन सच बात यह है कि बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया गाने इन्होंने बनाए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इनके नाम पर। वो अचीवमेंट ये कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे मेल डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई बढ़िया म्यूजिक बना के। मैं बात कर रही हूँ उषा खन्ना जी की, एंड दैट टू When she started late 50s, 60s, 70s, उस टाइम में। तो उषा खन्ना जी के कंपोज किए हुए गाने तो हम सुनेंगे ही, उनकी बातें भी और करेंगे, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ गाने गाए भी हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं वो मेनली किशोर दा ने गाया है, लेकिन इसमें जो थोड़े से आपको फीमेल वोकल्स सुनाई देंगे, वो जो एक हमिंग है फीमेल वॉइस में, वो उषा खन्ना जी की है। जॉनी मेरा नाम का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: It's hot. Mirchi. Fresh maal.
1: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है वल्ला।
2: ओए लुक ही

इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।